0: जी हाँ बिल्कुल, बुरा मत देखे, बुरा मत सुने और बुरा मत कहें, क्योंकि बुरा हमेशा ही बुरा होता है, उसका कोई बदल नहीं होता। हमेशा कोशिश ये करें कि हम अच्छाई के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। और आप अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल्स के ज़रिए, और आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम हम तक ज़रूर पहुंचाएं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी जिंदगी से जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत बातें होंगी भोर सुहानी के इस बेहद खूबसूरत सफर में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:37:15। महफिल सजी है आपके अपने पसंदीदा भोर सुहानी में, और भोर सुहानी में बातें जिंदगी से जुड़ी हुई। दोस्तों, जिंदगी में हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, कामयाबी, दौलत, शोहरत, इज्जत, इन तमाम चीजों से हम भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर सपनों का साथ ना हो, अपनों का साथ ना हो, तो इन सब की चमक थोड़ी फीकी लगने लगती है। इसलिए अपनों का साथ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि असली दौलत वो रिश्ते हैं जहां हमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, जहां हमारी खामोशी भी समझ ली जाती है, हमारी खुशी में कोई दिल से मुस्कुराता है और मुश्किल वक्त में बिना बुलाए हमारे साथ खड़ा हो जाता है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं भरोसे से, अपनापन देने से और एक दूसरे की कद्र करने से। कभी किसी अपने से छोटी सी गलती हो जाए तो उसे माफ करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कभी कोई अपने रूठ भी जाए आपसे तो पहल आप जरूर करिएगा मनाने की, झिझकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि रिश्तों में कौन सही था और कौन गलत, इससे ज्यादा अहम है कि रिश्ता हमारे लिए कितना कीमती बना रहे। हर मुश्किल वक्त में आप उनके लिए खड़े हों, वो आपके लिए खड़े हों, और इसी उम्मीद के साथ आज के इस सफर में आगे बढ़ते हैं और एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आज अपने किसी खास इंसान को बस इतना कह दीजिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो, इसके लिए बेहद शुक्रिया। यकीन मानिए, ये छोटे से अल्फाज किसी के दिल में बड़ी सी खुशी भर सकते हैं। और अब इसी खूबसूरत एहसास को आवाज दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह, फिल्म कुंवारी बहू के इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

जी हाँ, रिश्ते ये ज़िंदगी में मिलते हैं प्यार बन के, मोहब्बत के साथ, क्योंकि रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी भी एक गीत की तरह है। कभी सुर ऊंचे होते हैं तो कभी धीमे, कभी खुशियों की धुन बजती है तो कभी मुश्किलों की ताल। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर सुर बिल्कुल सही हो? नहीं ना। ज़रूरी ये है कि हम गाना बंद ना करें। सार शायद ताल सुर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन गाना गुनगुनाते रहना चाहिए। ये ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। मुश्किलें आए तो थोड़ा ठहरिए, सांस लीजिए और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़िए, क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी लंबे हों, अगर साथ में उम्मीद हो तो सफ़र कभी तन्हा नहीं लगता। ज़िंदगी में हर दिन हमें कोई ना कोई नया सबक ज़रूर मिलता ही है। कभी जीत हमें खुश करती है तो कभी हार हमें मजबूत बनाती है। इसीलिए हर अनुभव को एक खूबसूरत नगमा समझिए और उसे पूरे दिल से जीते गुनगुनाते हुए चलिए। और अगर कभी दिल उदास हो जाए तो किसी अपने से बात कर लीजिए, कोई पुराना गीत सुन लीजिए, या बस आसमान की तरफ देखकर उस खुदा, उस ईश्वर को याद कर लीजिए। शायद आपकी परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी, और अगर ना भी हो तो बस गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए।

0: महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीददारी की शुरूआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages with the programme focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is scheduled to continue till October 7. The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step towards grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during the journey.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे, हमारे आचरण से लोगों को पता चले।

హైదరాబాద్. గుడ్ మార్నింగ్.

0: मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है साक्षी मांडवाल। एशियन गेम्स के मैदान से भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, पदकों की खबरें, हर बड़े मुकाबले का ताजा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं सीधे आप तक। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी अपडेट के साथ। एशियन गेम्स में भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। उनका अंतिम स्कोर 484.6 रहा, जो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक रहा था। ईरान ने यहां पर कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: जी थैंक यू सो मच शाहिद। एंड द अदर गुड न्यूज दैट कम्स दिस मॉर्निंग इज वंस अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग। दोस्तों, इंडियन मेन इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस हैव आल्सो सिक्योर्ड द सिल्वर फॉर इंडिया। जी हां, दे डिलीवर्ड अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस विद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर फिनिशिंग थर्ड विद 589, नीरज कुमार स्टूड फोर्थ विद 588 और रुद्रांश बालासाहेब पाटिल फिनिश नाइन्थ विद 585। भारत का टोटल स्कोर इसके साथ बन गया था 1762 यानी 1762, विच अर्नड देम the silver medal. China took away the gold with 1766 points led by Zhang Changgong's 593, जो अपने आप में एक नया क्वालिफिकेशन गेम्स रिकॉर्ड है। और इसके साथ आपको ये भी बता दे कि अब ऐश्वर्य प्रताप सिंह और नीरज कुमार वापस से आज सुबह हमें 10:30 मैदान में दिखेंगे प्लेइंग द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द इंडियन मेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस।
0: साक्षी, एक और पदक के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें, टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में मनुषा और दिया चितले ने भारत का कांस्य पदक पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने हांगकांग के वोंग चुंग टिंग और हु डुई केम को हराकर जो सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। वहीं एक अन्य मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े को चीन के लिन सिंगडोंग और कुमेन से हार मिली है।
1: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आज हम आ रहे हैं, बिकॉज स्क्वाश में भी भारत को एक मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम अश्योर हो ही चुका है। जोशना चिनप्पा विल बी हैविंग अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट। द 40-year-old पार्टनरिंग विद वी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर देयर फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3 11-5। जोशना एंड वी सेंथिल कुमार विल नाउ बी फेसिंग हांगकांग्स ली काई एंड टैंग मिंग होंग इन द सेमीफाइनल्स टुमारो, thereby assuring India of at least a bronze medal in the match.
0: साक्षी, अब चलते हैं हॉकी के मैदान पे। भारत ने जापान को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी और एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था उसे जारी रखा है। लाल रिम श्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इशिका ने भारत की जो बढ़त थी उसको दोगुना कर दिया। इसके बाद नवनीत कौर ने तीसरा गोल दाग दिया। कोबायाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल दागा, लेकिन भारत ने अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली है।
1: जी शाहिद, थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां हमारे भारतीय शटलर्स ने हमें फिर से एक बार आज सुबह खुशखबरी ही दी है, बिकॉज इंडियाज इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन एट द एशियन गेम्स गॉट अंडरवे विद ध्रुव कपिला एंड तनिषा क्रास्तो टेक

0: King on Maldives, Aminat Abdul Razak and Nibal Ahmed in the mixed doubles. The Indian pair made a dominant start, comfortably taking the opening game 21-8. Iske baad jo dusra game tha, usko bhi hamare dono hi Bharatiya shuttlers ne apne naam kar liya 21-7 se, thereby winning the match in straight games 2-0, Shahid.
1: Ji haan, ek athletics ki khabar de dete hain. Mahila heptathlon mein long jump mein Anamika अनीश छठे स्थान पर है, कोई अच्छी खबर नहीं। पूजा दसवें स्थान पर रही। ओवरऑल स्टैंडिंग में अनामिका सातवें और पूजा नवें स्थान पर रही थी।
0: जी, और फेंसिंग की दुनिया से आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर लेके आएंगे, बिकॉज इंडिया हैव बीन पुट ऑन द बैक फुट अर्ली इन द मेंस टीम फॉयल राउंड 16 टाई अगेंस्ट हांगकांग एट द एशियन गेम्स। सचिन बिगैन विद द 2-5 लॉस टू चुन चॉय बिफोर हिमश सिंह वेंट डाउन 3-5 इन द सेकेंड रिले, लीविंग इंडिया 5-10 बिहाइंड। वहीं पर आदित्य देन गेव इंडिया सम होप विद द 6-5 विक्ट्री ओवर कार लॉन्ग च्योंग, रिड्यूसिंग द deficit to 4 points at 11-15. However, 17-year-old Sachin struggled to find enough touches in the next relay, with Hong Kong extending their advantage to 19-12. So, ab Bharat ke liye ek uphill aur bahut hi mushkil task hai to fight back into this event, क्योंकि आगे और भी रिलेज दोस्तों आज के दिन में आने वाले हैं।
1: जी, चलते चलते तैराकी की बात कर लेते हैं। पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट में धनुष सुरेश क्वालिफाई नहीं कर पाए। पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट में दक्षिण शशि कुमार और अनीश सुनील भी फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
0: यस इंडीड, ये सारे अपडेट्स हम आपके लिए इस समय सुबह 9:30 बजे लेकर आए थे, लेकिन जाने से पहले आपको एक और खुशखबरी दे दे, छोटी सी है लेकिन है तो खुशखबरी, कि भारत मेडल टेबल में भी इस समय अब 15 स्टैंड से 12th पोजीशन पर आ चुका है। जी हाँ, 12वें स्थान पर अब भारतीय टीम आपको मेडल टेबल में दिखेगी। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 18 मेडल हो चुके हैं, एक गोल्ड जो और ऐड हो गया है आज सुबह शूटिंग की दुनिया से, उसकी बदौलत अब भारत के पास है 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स, विच पुट्स इंडिया ऑन द टेबल एट द 12th पोजीशन प्रेजेंटली। उम्मीद करते हैं कि ये खुशियों का जो सफर है जारी रहेगा भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। फिलहाल के लिए मोहम्मद शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपसे सुबह के 10:30 बजे एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। गुड बाय फॉर नाउ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जेडी और आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। दोस्तों, आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारी सुबह होगी बप्पा के नाम। जी हाँ, क्योंकि आज है गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन। बप्पा के गानों के नाम और उन यादों के नाम जो गणेश उत्सव हमारे साथ छोड़ जाता है। तो आज के शो में सिर्फ बातें नहीं होंगी, आज म्यूजिक बोलेगा, ढोल बोलेगा और हाँ, हर कुछ देर में एक आवाज सुनाई देगी। जी हाँ, गणपति बप्पा मोरिया। चाहे आप हैदराबाद में हो, अपने घर के गणपति का विदाई देने की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी पंडाल में हो या फिर ट्रैफिक में फंसे हुए FM रेनबो सुन रहे हो, आज बप्पा की भक्ति और म्यूजिक दोनों आपके साथ है। और दोस्तों, आज के स्पेशल गणेश विसर्जन प्रोग्राम में हम सिर्फ सॉन्ग्स प्ले नहीं करेंगे, उन्हें हम इंजॉय करेंगे। जी हाँ, और आज का ये म्यूजिकल सफर पूरा गणपति बप्पा के नाम होगा, क्योंकि आज इतना खास दिन जो है, आज हम थोड़ा रुकेंगे, बप्पा को थोड़ा और जानेंगे और गणेश उत्सव से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद के अलग अलग एरिया में सजने वाले गणेश पंडाल, बप्पा के अलग अलग रूप और साइज की प्रतिमाएं और हमारे शहर की अपनी गणेश उत्सव ट्रेडिशन, इन सब पर बात होगी। फिर बात निकलेगी हैदराबाद से बाहर। जी हाँ, और हम देखेंगे कि देश के अलग अलग स्टेट्स में गणेश उत्सव किस तरह मनाया जाता है। कहीं बप्पा की प्रतिमा का रूप अलग, कहीं पूजा का परंपरा अलग, कहीं विसर्जन का अंदाज अलग, लेकिन इमोशन वही, बप्पा के लिए प्यार और श्रद्धा।

दोस्तों, किन किन को घालिन लोटांगन का जो लास्ट वाला जो मंत्र रहता है वो सुनते ही गूजबम्प्स आ जाते हैं, है ना? मुझे भी आते हैं। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग था ये, देवाश्री गणेशा फ्रॉम द मूवी अग्निपथ। तो दोस्तों, गणपति बप्पा के गानों का सिलसिला तो आज चलता ही रहेगा, लेकिन अब जरा बात करते हैं उन गणेश पंडालों की, जिनके जिनके दर्शन के लिए मैं पिछले 5 दिन से हैदराबाद की गलियों में घूम रहा हूँ। जी हाँ, 5 दिन से दिन और रात मैं हैदराबाद की गलियों में हर जगह पर पंडाल देखने जा रहा था, जैसे कि बेगम बाजार, चूड़ी बाजार, धूलपेट, मंगल हाट, आघापुरा, सिद्दंबर बाजार, गोशामल, पुराना पुल, बहादुरपुरा, हरी बवली, चार मीनार, दूध बोली और ओल्ड सिटी के कई और एरियाज। सच बताऊं, हर एरिया में बप्पा का रूप अलग, पंडाल का अंदाज अलग और कहानी भी अलग, और इसी वजह से हैदराबाद का गणेश उत्सव इतना इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, इतना इतना खूबसूरत और इतना कलरफुल है हैदराबाद एट प्रेजेंटली। हर जगह पर बस गाने, भजन और गणपति बप्पा के खूबसूरत मूर्तियाँ। जी हाँ, अगर हम बेगम बाजार की बात करें, एक ही एरिया में कितने अलग रूप। बेगम बाजार और फील खाना की तरफ जाएंगे तो आपको एक एक नहीं, कई इंटरेस्टिंग गणपति पंडाल मिलेंगे, कई इंटरेस्टिंग। यहाँ याली गणेश, पहलवान गणेश, कृष्णा और राम का कॉन्फ्लेंस वाला गणेश, वानपाल वाला गणेश, गोल्ड थीम वाला गणेश, कुंदन का गणेश, भाग्यनगर का राजा और फील खाने का राजा, जैसे पंडाल इस साल अट्रैक्शन से भरा पड़ा हो। और बेगम बाजार की बात करते हैं, एक आइडिल का जिक्र तो जरूर होना चाहिए। जी हाँ, 24 24 कैरेट गोल्ड कोटेड गणेश का आइडल।

हम आगे बात करेंगे धूल पेट और चूड़ी बाजार जैसे कई और एरियाज की। और आपको मैं बता दूं, मैंने तो ऐसा लिस्ट बना के रखा है, सारे सारे गणपति बप्पा के जो इंटरेस्टिंग आइडल्स हैं उन सब के फोटोज लेके रखा है, ताकि मैं आप सबसे शेयर कर सकूं कि वो कैसे कैसे बने हैं। तो दोस्तों, हमारे म्यूजिकल सफर को आगे बढ़ाते हैं। अभी सुनते हैं एक खूबसूरत सा और गणपति बप्पा का ही गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे एफएम रेनबो 101.9। स्टूडियो में 10:26 हो रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी। तो जी हां दोस्तों, हम अब बात करेंगे धूलपेट की। धूलपेट सिर्फ एक पंडाल लोकेशन नहीं है जी, यहां पर गणेश का आइडल मेकिंग का भी एक पुरानी पहचान है। यहाँ के आर्टिस्ट सालों से अलग अलग शेप और साइज में डिजाइन डिजाइन के गणेश बनाते हैं। इस साल भी रिपोर्ट में धूलपेट में 3 फीट से लेकर 20 फीट तक, जी हाँ 3 फीट से 20 फीट से भी बड़े आइडल्स बने और तेलंगाना के साथ नेबरिंग स्टेट्स तक भेजे जाने की बात सामने आई है। और यहाँ क्रिएटिविटी भी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। आर्टिस्ट ने स्टैंडिंग और बैलेंसिंग गणेश जैसे डिजाइन्स बनाए हैं। बुज्जा गणपैया का ट्रेंड भी बड़ा है और एक शिरडी विनायक को बुज्जा गणपैया डिजाइन में बनाया गया। जी हाँ, यहाँ पर जो है दोस्तों, जैसे ही गणेश महोत्सव का फेस्टिवल चालू होता है, यहाँ पर हम लोग पंडाल विजिट करने जाते हैं, जहाँ पर पंडाल में अलग अलग तरह के गणेश बनाए जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ हमें एक अट्रैक्शन देने के लिए है, हमें बस एक खूबसूरती से जिस तरीके से इसको बनाया जाता है वो देखने के लिए है। हालांकि गणपति बप्पा एक सिंपल और नॉर्मल, जो कि एक बुज्जा गणपैया के रूप में रहते हैं, और हर पंडाल में भी एक छोटा जो पूजा करने का गणपति बप्पा रहता है, जो नीचे होता है, और साथ में एक खूबसूरत सा दर्शाने के लिए अलग अलग तरह के खूबसूरत और अलग अलग थीम में गणपति बप्पा के आइडल्स को बनाते हैं, और ये बहुत फेमस है सारे इंडिया में। तो दोस्तों, बप्पा सिर्फ बड़े नहीं हो रहे, बप्पा के रूप भी हर साल नए हो रहे हैं। जी हाँ, हैदराबाद में देखा जाए तो इनके जो तरह तरह के वैरायटीज है गणपति बप्पा को बनाने का, तो हर साल नए नए आ रहे हैं। जी हाँ, कभी बॉलीवुड और कभी क्लासिक या कभी मॉडर्न। जी हाँ दोस्तों, और हर एक कैरेक्टर्स हम लोग गणपति बप्पा में बनाते हैं, और ये सिर्फ एक दिल को भाने के लिए होता है। जी हाँ, और बहुत खूबसूरत होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो सिर्फ हैदराबाद के एक छोटे से हिस्से की कहानी है, बेगम बाजार से धूलपेट तक, याली गणेश से गोल गणेश तक, ट्रेडिशनली क्राफ्टमैनशिप से मॉडर्न क्रिएटिविटी तक, हर जगह एक ही इमोशन। जी हाँ दोस्तों, वो है गणपति बप्पा मोरिया।

0: 50.30 सेकेंड्स, देन दे कंपीटेड इन फाइनल बी जहां पर उन्होंने तीसरे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम चार पेयर्स के बीच में से, क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 1:40.411 सेकेंड्स। वही वुमेन्स कैनू डबल में 500 मीटर के सेमीफाइनल्स में मेघा प्रदीप और नेहा देवी ने भी चौथे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम फाइव पेयर्स विद अ टाइमिंग ऑफ 2:08.306 सेकेंड्स। वेल, इसके साथ ही दी इंडियन वुमेन्स कयाक 4500 मीटर क्वार्टरेट ऑफ देवी क्वारिकप्पा, पूजा सोनिया देवी फायरबम एंड पार्वती गीता फिनिश्ड 8th इन द फाइनल ए विद द टाइमिंग ऑफ 1:45.670 सेकेंड्स। शाहिद,
1: साक्षी, टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। महिला एकल यशस्विनी घोरपड़े ने सीरिया की हैंड जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। यशस्विनी ने मुकाबला 11-5, 11-5, 11-8, 11-8, 11-4 से जीता। अब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना जापान के वर्ल्ड नंबर 3 मिवा हरिमोटो से होगा। पुरुष युगल में मानव और मानुष की भारतीय जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में जापान के हरिमोटो और शोनोजुका के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व टेबल टेनिस में ही जी साथियान और हरमीत देसाई की जो भारतीय जोड़ी, उन्होंने पुरुष युगल में राउंड ऑफ 2 के मुकाबले में जो दूसरा मुकाबला था उसमें इंडोनेशिया के अफान प्रतमा और मोहम्मद नेगारा को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है।
0: जी, एंड क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, जहां भारतीय महिलाओं का सामना हो रहा है नेपाल से इस वक्त, और भारत ने पहले हाफ में बहुत ही स्ट्रांग बढ़त बना ली थी ओवर नेपाल 31-17 की एट द एंड ऑफ हाफ टाइम। और अगर हम बात करें उसमें संजू देवी और सोनाली के सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इन हेल्पिंग इंडिया ग्रैब दोस कोवेटेड पॉइंट्स ऑफ 31 पॉइंट्स, विच देयर बाय हेल्प देम ऑल्सो गेट अ लीड इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर इन द फर्स्ट हाफ ओवर नेपाल। सेकेंड हाफ की भी शुरुआत हो चुकी है शायद, जहां पर इस वक्त अगर बात करें तो भारत लीड में बना हुआ है 17 अंकों के साथ और नेपाल है पीछे 7 अंकों के साथ। भारत का टोटल अभी तक का 48 पॉइंट्स का, जबकि एक्सैक्टली नेपाल उसके आधे पे है 24 पे। मैच ऑन गोइंग है, बट लुक्स लाइक इंडिया शुड बी विनिंग द सेमीफाइनल इन दिस।
1: आज इंडिया के लिए खबर अच्छी आ रही है। बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स की महिला एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली है। उन्नति ने उत्तर कोरिया की यूमी सांग को सीधे गेम में 21-9, 21-10 से शिकस्त दी। अब राउंड ऑफ 32 में उन्नति का सामना मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेला जाएगा।
0: राइट, और आपको बता दें टेबल टेनिस की दुनिया में से भी कि टेबल टेनिस के अंदर हम जो अभी देने वाले हैं वो अपडेट आपके लिए यह आ रहा है कि यशस्विनी घोरपड़े डिफीटेड हेंजादा 4-1 टू रीच द राउंड 16 ऑफ एशियन गेम्स। और वहीं पर मिक्स डबल्स के जो हमारा पैर है मानव और मानुष का, दे लॉस्ट टू हरिमोटो एंड शिनोजुका ऑफ जापान 1-3 इन द राउंड ऑफ 32। एंड ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कबड्डी, जहां भारत की महिलाओं ने नेपाल की महिलाओं को दोस्तों हरा दिया है और सेमीफाइनल जीत लिया है, विच मीन्स मोहम्मद शाहिद दैट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल एंड दिस टाइम इट वुड ईदर बी अ सिल्वर और अ गोल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी। And our women will be making us proud once again.
1: बिल्कुल, अब मेडल टेबल पर भारत को उछाल मिलने वाला है। आज जब शाम ढलेगी तब देखेंगे हम भारत का जो मेडल टेबल पर उछाल हो कितनी ऊपर जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतनी, एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट है फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: तो जी हाँ दोस्तों, ये था 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 जो कि हेल्ड है जापान में। इसके अपडेट्स आप सुन रहे थे।

वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडियो में 10:37 हो रहा है और आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और बप्पा के तो गाने बजते ही रहेंगे क्योंकि हैदराबाद में गणेश पंडाल की लिस्ट इतनी लंबी है कि 4 घंटे भी ना कम पड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं पिछले 4-5 दिन से ना जिस जिस तरफ गया, कोटी, सुल्तान बाजार, एबेट्स, गन फाउंड्री, नामपल्ली, रामनगर, सिकंदराबाद, उप्पल, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, और ये खत्म नहीं होगा लिस्ट। और ओल्ड सिटी की तो ना जाने कितनी गलियां। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड सिटी और चार मीनार की गलियां तो इतने ज्यादा है, और हर गली में एक गणेश नहीं, हर गली में 5-6 गणपति बप्पा के ना पंडाल मिल जाएंगे आपको। लेकिन कुछ पंडाल और थीम्स ऐसी है जिनकी जिक्र जरूर करना है। कोटी और सुल्तान बाजार की अगर हम बात करें तो कोटी की तरफ देखिए तो ना इस साल बुर्ज खलीफा थीम में सेटअप किया है और इसका अटेंशन ना सारे लोगों को ग्रैब किया। और सुल्तान बाजार में सुल्तान बाजार का राजा, चप्पल बाजार में चप्पल बाजार का गणेश, ट्रूप बाजार में ट्रूप बाजार गणेश मंडल।

और जहां उनकी हिस्ट्री को डिफरेंट स्टेशंस के थ्रू दिखाया गया है। 24 सितंबर के दिन रिपोर्ट के मुताबिक लोग रात देर तक इस कथा को सुनने के लिए आ रहे थे। यानी गणेश पंडाल सिर्फ डेकोरेशन की जगह नहीं है, कभी स्टोरी बता रहे हैं, कभी कल्चर दिखा रहे हैं, कभी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, और कभी किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की कहानी सुना रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम अगले गाने के बाद हम बात करेंगे नागोल का। जी हाँ, नागोल का गणपति बप्पा, जो कि सबसे सबसे ऊंचा है। मैं बताऊंगा कितना ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, खैरताबाद गणेश, इनके भी बारे में हम जरूर बात करेंगे हमारे आगे सेगमेंट में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया।

भाई साहब, क्या एनर्जेटिक सॉन्ग है यार, सच्ची में। लेकिन चाहे एनर्जी कितना भी हो, आज का दिन बहुत ही इमोशनल होने वाला है। बाय गॉड, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जो कि आज के दिन बहुत इमोशनल हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि गणपति बप्पा को ना इतने दिन घर में रखकर उनको टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, गणपति बप्पा बस अपने घर जा रहे हैं, हमारे दिल में तो हमेशा रहेंगे। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, बस बोलिएगा गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए हम हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हैदराबाद के अलग अलग जगह में गणपति बप्पा का पंडाल कैसे बने हैं। तो अभी बात करते हैं नागोल का। जी हाँ, और यहाँ इस साल बना है 72 फुट का श्री अष्ट सिद्धि मंगलापति का गणपति बप्पा का आइडल। इस आइडल की खास बात सिर्फ इसका साइज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कंप्लीटली इको फ्रेंडली है। इस अप्रोच से बनाया गया है इसको। नेचुरल मटेरियल्स जैसे क्ले, ग्रास और वुड का यूज किया गया। पीओपी और केमिकल बेस्ड मटेरियल से बचने की बात ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, विसर्जन भी वही डिजिग्नेटेड साइट पर करने का प्लान है। और इमर्शन के बाद उस बड़े गणपति का जो क्ले है और जो कुछ भी वो पानी विसर्जन करने के बाद जो मिट्टी बचता है, उसको डिवोटीज को रीयूज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और ये है नागोल में। तो अगर आप वहीं पर आसपास है तो जाइएगा, और आप इस मिट्टी का इस्तेमाल अपने घर में पौधे लगाने में कर सकते हो, ताकि एक याद बना रहे। और फिर खैरता बात का बड़ा गणपति। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में तो पूरी दुनिया में चर्चा है। हाँ जी हाँ, हैदराबाद का जो गणेश उत्सव की बात हो और खैरताबाद बड़ा गणेश का नाम ना हो, इम्पॉसिबल। इस साल खैरताबाद में 69 फुट का पंचमुख संकटहरा महागणपति का रूप है। और इस आइडल के साथ विश्वकर्मा, विष्णु, शिवलिंगम और काली माता को भी डिस्प्ले का हिस्सा बनाया गया। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद में इस साल एक इंटरेस्टिंग हाइट कंपैरिजन भी देखने को मिला। नागोल का जो 72 फुट बप्पा और खैरताबाद का 69 फुट का गणपति बप्पा, लेकिन बप्पा की भक्ति को फीट में मेजर थोड़ी ना किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं बप्पा 3 फीट के हैं, कहीं बप्पा 20 फीट के हैं, कहीं 69 फीट के और कहीं 72। और हाँ, कहीं कहीं जगह पर सेंटीमीटर्स के भी है। जी हाँ, लेकिन श्रद्धा हर जगह उतनी ही बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, जो है आओ जरा झूमो जरा। हर जगह पर पूरे हैदराबाद में और हैदराबाद के बाहर पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है, आओ जरा और झूमो जरा। चलो हम भी झूम ले थोड़ा सा।

दोस्तों, ये गाना है तकदीर के बादशाह फिल्म का, जो कि 1982 में आया, और इसके सिंगर है किशोर कुमार और लिरिसिस्ट अंजन। चलिए सुनते हैं ये गाना।

वेलकम बैक दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने झूमा है और नाचा है इस गाने पे। अगर आप अपने घर में हो तो आप मंदिर में जाकर रेडियो लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज पूरे बप्पा जी के गाने बजने वाले हैं। और रही बात, हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, बेगम बाजार की गलियों से लेकर दूलपेट के कलाकारों तक, कोटी के थीम्ड पंडाल पंडाल से लेकर सुल्तान बाजार की कहीं कहानियों तक, नागोल के इको फ्रेंडली बप्पा से लेकर खैरताबाद के विशाल गणपति तक, हर जगह बप्पा का अलग रूप और हर रूप के पीछे एक कहानी। और मैं तो कहूँगा, अगर आपने पिछले कुछ दिन हैदराबाद की गलियों में बप्पा का दर्शन किया है तो आपने सिर्फ आइडल्स नहीं देखे, आपने हैदराबाद की एक बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन को जीते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम 11 बजे सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस और हमारा

0: वेलकम बैक दोस्तों, स्टूडियो में 11:05 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी यानी जयदीप। जी हां, तो दोस्तों एक क्विक अपडेट, यहां पर खैरताबाद जी का गणपति बप्पा विसर्जन के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं। जी हाँ, रात से ही यहाँ पर चालू हो गया है बंदोबस्त और सुबह 5 बजे करीब या 5 बजे यहाँ पर क्रेन्स मेन लगाकर सारे इस बप्पा जी को गाड़ी में बिठा कर ले जाना चालू कर दिए हैं और अभी का शायद मेरे ख्याल से यहाँ करीब करीब सेक्रेटेरिएट तक पहुँच चुका है और बहुत ही जल्द अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखेंगे जो है कि इतने ऊंचे गणपति बप्पा और विसर्जन हो रहे हैं टैंक बंड में। जी हाँ, हमारे टैंक बंड में और इतने सारे लोग इतनी भक्ति और श्रद्धा से जमा हुए हैं इस इतने बड़े बप्पा को देखने के लिए, हमारे बड़े गणपति बप्पा को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी सावधान रहिएगा क्योंकि बहुत सारा भीड़ भाड़ है और अगर कोई नाच गाना चल रहा है तो लारी और जो भी गाड़ियाँ हैं उनके करीब में मत रहिएगा क्योंकि अगर पैर वैर आ सकता है। और जी हाँ दोस्तों, और सावधानी रहना तो ज़रूरी है, हमारे बिलोंगिंग्स और हमारे अपने और बच्चों को साथ रखिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम अपना स्पेशल शो को आगे बढ़ाते हैं जो कि है गणपति बप्पा विसर्जन के ऊपर। तो हमने अभी तक बात की है हैदराबाद के कई जगहों के बारे में जहाँ पर हम लोगों ने सुना है कि पंडाल के कैसे कैसे थीम्स बने, अलग अलग साइज़ के गणपति बप्पा और कैसे कैसे ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, कहीं कहानियाँ चल रही हैं कहीं थीम पार्क चल रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत। अभी गणपति बप्पा की बात हो रही है और महाराष्ट्र का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक पूरा गणेश उत्सव है। मुंबई की गलियों से लेकर पुणे के चौक तक बप्पा के पंडाल, ढोल ताशा, आरती और विसर्जन की एनर्जी एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। अगर मेरा मानो तो एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर लेती है अपना। जी हाँ, और जब मुंबई की बात आती है तो सबसे पहले नाम याद आता है लालबाग का राजा, यानी कि वहाँ पर लालबागचा राजा। लालबागचा राजा मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति के आइडल्स में से एक है। हर साल देश के अलग अलग कोने से लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही मुंबई में गणेश गली गणपति, जीएसबी गणपति और कई पुरानी सार्वजनिक गणेश मंडल भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। और पुणे की बात करें तो श्रीमंत दगड़ूशेठ, जी हाँ, हमारे बहुत ही प्यारे श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का नाम बहुत ही खास है। तो महाराष्ट्र में एक और खूबसूरत ट्रेडिशन है गौरी गणपति का। जी हाँ दोस्तों, गौरी गणपति, गणपति के साथ गौरी माता का भी स्वागत कई घरों में किया जाता है और फिर आता है वो मोमेंट अनंत चतुर्दशी जो कि है आज। ढोल ताशा की आवाज, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे और बप्पा को विदा करते हुए वो इमोशनल मोमेंट्स। महाराष्ट्र टूरिज्म के मुताबिक गणेश उत्सव 1.5 दिन यानी कि आधे दिन से लेकर डेढ़ दिन से लेकर 5 दिन, 7 दिन और 11 दिन तक भी मनाया जा सकता है। जी हाँ, और अनंत चतुर्दशी पर बड़े विसर्जन होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है, बप्पा आते हैं तो घर और गली दोनों एक साथ परिवार बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आते हैं और एक मतलब घर गली सब कुछ ऐसे लगता है कि सब एक परिवार है। ये टाइम ही ऐसा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जाते वक्त सबकी आंखों में एक ही बात होती है, जी हाँ, आंसू और गणपति बप्पा मोरिया पुड़चा वर्षी लौकरिया। ये हमने बहुत सुना होगा, पुड़चा वर्षी लौकरिया, इसका मतलब ये कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि अगले बरस तू जल्दी आ।
1: असम లో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.

दोस्तों, चलिए अब महाराष्ट्र से थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, क्योंकि भारत में बप्पा का रूप एक ही है, लेकिन उन्हें बुलाने का अंदाज, उनकी पूजा की परंपरा और उनके फेस्टिवल का फ्लेवर हर रीजन में थोड़ा अलग है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गणेश चतुर्थी को बहुत जगह विनायक चवथी कहा जाता है, और हैदराबाद की बात तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ का खैरताबाद का बड़ा गणेश देश भर में एक गैंजेटिक मूर्ति है। जी हाँ, इस साल हैदराबाद में खैरताबाद का गणेश 69 फीट पंचमुख संकटहर महागणपति अट्रैक्शन का मेजर सेंटर हो रहा है। लेकिन साउथ इंडिया में सिर्फ बड़े आइडल्स ही कहानी नहीं है। कर्नाटका, जी हाँ, कर्नाटका में गणेश चतुर्थी से पहले गौरी हब्बा मनाया जाता है, यानी गौरी माता और गणपति बप्पा। जी, दोनों की पूजा का कनेक्शन यहाँ फेस्टिवल को एक अलग ही रूप देता है। तमिलनाडु में बप्पा को अक्सर पिल्लैयार या विनायगर कहा जाता है। जी हाँ, पिल्लैयार या विनायगर कहा जाता है। यहाँ गणपति के लिए बनने वाले कोजू कट्टाई बहुत फेमस है। जी हाँ, कोजू कट्टाई, जो स्पेशली मोदक का ही एक रीजनल वर्जन माना जाता है, वहाँ का अलग सा फ्लेवर। जी, जैसे कि हम महाराष्ट्र में मोदक बनते हैं, वहाँ पर बनता है कोजू कट्टाई। और फिर केरला, जी केरलम, जहाँ गणपति की पूजा घरों और टेम्पल्स में अपनी लोकल ट्रेडिशन के साथ होती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह, जी हाँ, गोवा। जी, गोवा में गणेश चतुर्थी को चोवट, जी हाँ, चोवट कहा जाता है। यहाँ कई फैमिलीज के लिए ये एक इंटीमेट फैमिली सेंटर्ड फेस्टिवल है, जहाँ पर सब गैदर होते हैं घरों

में ट्रेडिशनल डेकोरेशंस, खास तौर पर माटोली जी फेस्टिवल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और गोवा के अड़पाई विलेज में तो इस साल 19 फैमिली गणेश आइडल्स को ट्रेडिशन कैनोस के थ्रू जुआरी रिवर तक ले जाकर वहाँ पर विसर्जन किया जाता है, एक सेंचुरीज ओल्ड फैमिली ट्रेडिशनल के रूप में। तो देखिए, नाम बदला, जैसे कि गणपति, विनायक, विनायगर, पिल्लैयार, रिवाज बदले, प्रसाद बदले, लेकिन भावना वो वही है, बप्पा मेरे घर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए, अभी हम साउथ की बात कर ही रहे हैं तो अब हम थोड़ा साउथ के गाने बजाते हैं। और आज एक और दिन भी है जो याद करने का है, जो कि है एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का डेथ एनिवर्सरी। और उन्होंने कई कई भाषाओं में कई गाने गाए हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, और उन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं। हम एक छोटा सा सेगमेंट इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना पहले सुनते हैं, चलिए।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज 25 सितंबर इंडियन म्यूज़िक के इतिहास का एक इमोशनल दिन है। आज ही के दिन 25 सितंबर 2020 में हमने एक लेजेंडरी सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को खो दिया था। एसपीबी जी ने अपने करियर में 40,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स गए, जी हाँ 40,000 सॉन्ग्स से भी ज़्यादा, और 16 इंडियन लैंग्वेजेस में इन्होंने रिकॉर्ड किया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मराठी, बंगाली, ओडियाई और कई दूसरे भाषाओं में उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंची। और सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, वो म्यूज़िक कंपोज़र, एक्टर, प्रोड्यूसर और डबिंग आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने 6 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स जीता है, जी हाँ, और अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी अपने नाम किया। लेकिन एसपीबी की सबसे खास बात शायद अवार्ड्स और नंबर से भी आगे है। उनकी आवाज़ ने लैंग्वेजेस की बाउंड्रीज क्रॉस की। एक तेलुगु लिजनर हो, तमिल लिजनर हो, कन्नड़ा, मलयालम या हिंदी म्यूजिक लवर हो, एसपीबी की आवाज़ सबकी अपनी लगती है, जी हाँ दोस्तों। तो चलिए हम अपना विसर्जन का शो को आगे बढ़ाते हैं और हम अभी आगे बात करने वाले हैं कुछ और जगह के बारे में। अब जरा चलिए इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। जी हाँ, बंगाल का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जी दुर्गा पूजा, बिल्कुल। और यही बात, यही गणपति की एक इंटरेस्टिंग रीजनल कनेक्शन देखने को मिलता है। बंगाल में ऑटम फेस्टिवल सीजन का सबसे बड़ा कल्चर सेलिब्रेशन दुर्गा पूजा है। माँ दुर्गा के साथ उनके 4 बच्चों, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश, इनको भी पूजा और डिस्प्ले में रखा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के उत्सव पोर्टल के मुताबिक बंगाल की दुर्गा पूजा ट्रेडिशन में गणेश माँ दुर्गा के परिवार का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। जी हाँ दोस्तों, तो बंगाल में गणेश जी को देखने का एक इम्पोर्टेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि वो दुर्गा फैमिली तबेले का हिस्सा है, जी हाँ। लेकिन अब चलिए ओडिशा की तरफ। हमारे ओडिशा का कटक में एक बहुत इंटरेस्टिंग और पुरानी ट्रेडिशन है, बूढ़ा गणेश पूजा। जी हाँ, कटक के बनिया सही में बूढ़ा गणेश पूजा की ट्रेडिशन को लगभग 400 साल पुरानी बताया गया। आज भी ये सेलिब्रेशन सिर्फ बड़े पंडाल और जेंट आइडल्स के कंपटीशन पर बेस्ड नहीं है। यहाँ कम्युनिटी और जनरेशन से चली आ रही परंपरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी हाँ दोस्तों। और उड़ीसा में आइडल मेकिंग की कला भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। कटक के आर्टिसंस आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ नए डिज़ाइन और ऑर्नामेंट्स के साथ गणेश आइडल्स बनाते हैं। और थोड़ा बिहार और झारखंड की तरफ जाए तो यहाँ गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र जैसे मैसिव पब्लिक फेस्टिवल हर जगह नहीं होता। कई जगहों पर गणपति की पूजा घरों, टेम्पल्स और लोकल कम्युनिटी सेलिब्रेशंस के थ्रू होती है। तो दोस्तों, और यही तो इंडिया की ब्यूटी है, हर जगह बप्पा का स्केल सेम है, हर जगह विसर्जन का स्टाइल सेम है, हर जगह पंडाल सेम नहीं। लेकिन विघ्नहर्ता का स्वागत करने की फीलिंग सेम है, जी हाँ। पंडाल सेम नहीं तो क्या, हमारा पूजा करने का स्टाइल और हमारी मान्यता तो सेम है ना। लेकिन विघ्नहर्ता का स्वागत कर

0: का फीलिंग, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही हमारे एक ऐसा कि पोर्टल खोल देता है कि एक भक्ति भावना श्रद्धा और कई लोगों के लिए बहुत उत्साह का पर्व बन जाता है ये। तो दोस्तों चलिए अभी हम सुनते हैं 11:30 को एक अपडेट जो कि है 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स का, जो कि 2026 का है और वो हो रहा है जापान में।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्सिंग की खबर के साथ। बॉक्सिंग रिंग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जादे को कड़े मुकाबले में 4-1 से, जो निर्णायक मुकाबला था, उसमें शिकस्त दी। मुकाबले की शुरुआत से ही सचिन ने अपनी रफ्तार और सटीक पंचों से दबाव बनाए रखा। अबू सादे ने अंतिम दौर में जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन रिंग में उनकी थकान साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर सचिन लगातार चुस्त दिखाई दिए और उन्होंने कई सटीक मुक्के लगाए भी, और इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुंसुके किटामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं।
2: राइट, थैंक यू सो मच शाहिद जी। मूविंग ऑन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अपडेट आल्सो ओवर हियर, बट अनाहत सिंह इन द वुमेन सेमीफाइनल। हम स्क्वाश की पहले बात कर लेते हैं। अनाहत सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रियट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग हर 3-0, 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन सिंगल सेमीफाइनल्स। द 18-year-old डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कंफर्टेबली गेटिंग पास्ट 30-year-old ओपोनेंट। अनाहत विल फेस जापान सतोमी वनटोबे इन द सेमीफाइनल। द जापानीज प्लेयर इज वर्ल्ड नंबर 6 एंड वन ब्रॉन्ज एट द 2022 ह्वांगजू एशियन गेम्स। और आपको यह भी बता दें कि लेटेस्ट अपडेट में भारत के वीर चौधरानी मोहम्मद इरफान से मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से हार गए हैं। वेल, इट वाज ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी टफ टाइम, द स्कोर लाइन रीडिंग 11-6, 8-11, और आगे भी अगर हम बात करें तो सिर्फ पहला ही वो सेट जीत पाए थे, उसके बाद के वो तीनों हार गए। इट वाज लुकिंग दैट ही वुड बी लूजिंग द गेम एंड प्रीटी मच दैट सम्स अप द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स इन स्क्वाश। शुरुआती दिन में आज हमने ये भी देखा कैसे स्क्वाश में जोशा चिनप्पा ने भी एशियन गेम्स में एक मेडल भारत के लिए अशोर करवा दिया है। 16 साल के बाद जब उन्होंने अपना यहां पे उम्मीद रखेंगे वे शी बी विनिंग द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिन ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। द विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। आपको यह भी बता दें कि अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रुयोनसुके त्सुकिकी, बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स टू रीच द मेन सिंगल्स सेमीफाइनल। अभय कुड फेस कंपैट्रियट वीर चौटरानी इन द लास्ट फोर इफ वीर गेट्स पास्ट पाकिस्तान मोहम्मद इरफान, जो कि अब दोस्तों आपको बता दें होने वाला नहीं है, क्योंकि वीर चौटरानी मेन सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मोहम्मद इरफान से हार चुके हैं। लेकिन उम्मीद यहां पर करेंगे कि अभय आगे अपने नेक्स्ट राउंड में भी प्रवेश करके भारत को भी अभय सिंह मेडल दिलवा सके शायद।
1: साक्षी, शूटिंग से जैसा कि सुबह दो अच्छी खबर आई थी, लेकिन यहां पर एक और फाइनल मुकाबला खेला गया जहां अच्छी खबर नहीं है। शूटिंग 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो फाइनल मुकाबला था, वहां भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में 327.6 अंकों के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं नीरज कुमार 299 के अंक के साथ आठवें स्थान पर है। इस वर्ग में चीन के नाम गोल्ड और सिल्वर यानी दोनों पहले दो पदक रहे, जबकि ब्रॉन्ज मेडल कजाकिस्तान के निशानेबाज ने अपने नाम किया।
2: राइट, एंड गिवन बाय हाउ गुड मोहम्मद इरफान लुक्ड इन द मेंस क्वार्टर फाइनल राउंड, मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स इन स्क्वाश, वील हैव टू वेट एंड वॉच एज टू हाउ इट टर्न्स आउट इन द सेमीफाइनल्स फॉर अभय सिंह इन स्क्वाश अप अगेंस्ट मोहम्मद इरफान। लेकिन अब मूव करेंगे बैडमिंटन की तरफ भी, जहां उन्नति हुडा बिगान एशियन गेम्स कैंपेन ऑन अ विनिंग नोट, डिफीटिंग नॉर्थ कोरियाज जी मी सोंग 21-9, 21-10 इन स्ट्रेट गेम्स। उन्नति विल नाउ बी फेसिंग मलेशियाज वोंग लिंग चिंग इन द नेक्स्ट राउंड। हमने आज दिन की शुरुआत में एशियन गेम्स में देखा किस तरह से भारत के इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन जो शुरुआत हुई एशियन गेम्स में, उसमें ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो ने मालदीव के अमिनात अब्दुल रजाक और निबल अहमद को मिक्स डबल्स में किस तरह से उन्होंने प्रवेश करके हरा दिया। दे वेंट ऑन टू डिफीट देयर मालदीव्स ओपोनेंट्स इन स्ट्रेट गेम्स, विनिंग द एंटायर मैच 2-0 वेरी कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली, द स्कोर लाइन बीइंग 21-8, 21-7।
1: अब एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में महिला एथलॉन में भाला फेंक इवेंट में अनामिका अनीश ने 10वां जबकि पूजा ने 6ठा स्थान हासिल किया। कुल स्कोर के आधार पर अनामिका 8वें और पूजा 9वें स्थान पर रही। अब दोनों के सामने एक स्पर्धा

0: आधा बाकी है। दोस्तों को बता दें हेप्टाथलॉन होता क्या है। हेप्टाथलॉन महिलाओं की दो दिवसीय संयुक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसमें खिलाड़ियों को 7 अलग अलग स्पर्धाओं में प्रदर्शन करना होता है। पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉटपुट और 200 मीटर दौड़ होती है, जबकि दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ के साथ प्रतियोगिता पूरी होती है। हर स्पर्धा के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं और सभी 7 स्पर्धाओं में कुल अंकों के आधार पर विजेता तय होता है।
1: राइट, और जाने से पहले आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस समय मेडल टेबल में भारत कैसे स्टैंड कर रहा है। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 12th। कुल मिलाकर भारत के पास हो गए 19 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड आ चुके हैं, 1 क्रिकेट की बदौलत, महिला क्रिकेट की बदौलत, और 1 हमारी शूटिंग की बदौलत। 8 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। अब यही उम्मीद है कि भारत अपने प्रदर्शन को और बेहतर करता जाए समय के साथ साथ, दिनों के साथ साथ, लेकिन देखते हैं सफर भारत के लिए कैसे पैन आउट होने वाला है। फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोस्तों एक बार फिर से सारे लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडियो में 11:36 हो रहा है और अभी 1, 2, 3, जी हाँ 11:37 हो रहा है। तो हमारी अभी जर्नी हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले एक क्विक अपडेट। बालापुर से एक अपडेट आया है कि इस बार बालापुर गणपति बप्पा का लड्डू का जो ऑक्शन है यहाँ 39 लाख में हुआ है। जी हाँ, ऑक्शन को आगे बढ़ाया है 39 लाख तक। ये हर साल होता है, बहुत ही जश्न से होता है यहाँ पर, और बहुत ही भक्ति भाव से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा वेस्ट की तरफ। जी हाँ, सेंटर और नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले गुजरात, अहमदाबाद और गुजरात के कई शहरों में गणेश चतुर्थी के दौरान घरों के साथ कम्युनिटी पंडाल में भी बप्पा के स्थापना होती है। यहाँ डेकोरेशन, कल्चरल प्रोग्राम्स और विसर्जन लोकल कम्युनिटी ट्रेडिशंस के हिसाब से अलग अलग रूप लेता है। जी हाँ, अब चलिए मध्य प्रदेश की तरफ। एमपी की एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ गणपति की मूर्तियों में सिर्फ एक ट्रेडिशनल फॉर्म ही नहीं, मध्य प्रदेश में मिली पुरानी आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स में गणेश के अलग अलग आर्टिस्टिक फॉर्म्स भी देखने को मिलता है, जिसे नृत्य गणेश यानी डांसिंग गणेश बोलते हैं। और फिर आते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पास। इन स्टेट्स में गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन महाराष्ट्र के जैन पब्लिक गणेश उत्सव मॉडल से काफी डिफरेंट हो सकती है। कई जगह पर घरों और टेम्पल्स में गणपति पूजा होती है, और कुछ शहरों में पब्लिक पंडाल्स भी लगाते हैं। और रही बात दिल्ली एनसीआर की, तो अपनी ही कहानी है। यहाँ देश के अलग अलग स्टेट से आए लोग रहते हैं, इसीलिए गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस में महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, गुजरात और दूसरे रीजियंस की ट्रेडिशंस का मिक्सचर भी देखने को मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे तो असम जैसे स्टेट में भी गणपति बप्पा की पूजा होती है, लेकिन लोकल कल्चर के हिसाब से उसके स्केल और फॉर्मेट अलग हो सकते हैं। यानी भारत में गणेश चतुर्थी का एक ही फॉर्मूला नहीं है, कहीं ढोलताशा, कहीं

गणेश, कहीं चोटी और कहीं विनायक चौथी, कहीं पिल्लयर चतुर्थी और कहीं बप्पा किसी बड़े फेस्टिवल के कल्चर परिवार के हिस्से बनकर विसर्जन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ हर जगह कॉमन है, शुरुआत से पहले गणपति का स्मरण और हर नए काम से पहले विघ्न।

0: दोस्तों, आज जब हम गणपति बप्पा के इतने बड़े बड़े पंडाल्स देख रहे हैं, हजारों लोग को एक साथ बप्पा के दर्शन करते देख रहे हैं, ढोल ताशा सुन रहे हैं, उस पे नाचते गा रहे हैं, तो एक सवाल नेचुरली आता है, आखिर गणेश महोत्सव इतना बड़ा पब्लिक सेलिब्रेशन बना कैसे? गणेश जी की पूजा तो भारत में बहुत पुरानी है। घरों में गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन गणेश उत्सव को एक बड़े पब्लिक सेलिब्रेशन के रूप में महाराष्ट्र में 19वीं सेंचुरी के आखिरी में मिला। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव को ऑर्गेनाइज करने को प्रमोट किया। उनका आइडिया था कि गणपति के फेस्टिवल के थ्रू लोगों को एक जगह इकट्ठा होने और कल्चरल प्रोग्राम्स करने, डिस्कशंस करने और कम्युनिटी स्पिरिट स्ट्रांग होने के लिए इन्होंने ये सोचा था। धीरे धीरे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश मंडल बनने लगे, और फिर जो गणेश उत्सव शुरू हुआ वो सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहा। पंडाल बने, डेकोरेशंस आई, म्यूजिक और कल्चर प्रोग्राम्स आए, और विसर्जन एक बड़े पब्लिक प्रोसेशन में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, आज मुंबई के लाल बागचा राजा, पुणे के दगड़ूशेठ गणेश और महाराष्ट्र के कई हिस्टोरिक गणेश मंडल की पब्लिक गणेश उत्सव की रिच ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रही है, जो कि सदियों से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, हैदराबाद में भी गणपति महोत्सव की एक कहानी है जो अपने आप में ही बहुत ही खास है, और उस कहानी का नाम है खैरताबाद गणेश। जी, खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी की जर्नी 1954 में शुरू हुई थी। उस वक्त यह गणेश जी की मूर्ति सिर्फ 1 फीट की थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सिर्फ 1 फीट की। कमेटी की स्थापना फ्रीडम फाइटर एस शंकरैया ने की थी, और उसके बाद कई दशकों तक उनके परिवार ने इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया। सोचिए, 1954 में 1 फुट की मूर्ति, और आज करीब करीब 70 फुट की मूर्ति। हर साल खैरताबाद गणेश का रूप और थीम डिवोटीज के लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बन जाता है। 2026 में बप्पा का रूप है पंचमुख संकटहर महागणपति, यानी पंचमुखों के साथ 69 फीट का बप्पा। जी हाँ, इस साल तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे गानों के सिलसिले को। और रही बात, जब बात आई है यहाँ पर महाराष्ट्र की, एक गाना महाराष्ट्र का यानी कि मराठी में भी बजा ही लेते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
1: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్

बहुत ही प्यारा सा गाना था, माजा बापा किती गोड़ देस्तो। दोस्तों इसका मतलब है मेरे गणपति बापा कितने स्वीट दिखते हैं, मेरे मोरिया कितने स्वीट दिखते हैं। और इसको गाया है योगिता कोली ने, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने। और दोस्तों अभी

हम पूरे इंडिया के जो गणेश कल्चर और जगह जगह पर अपनी परंपरा और अपने तरीके के बारे में हम लोगों ने बात किया है, एक बार हम फिर से हैदराबाद की तरफ नज़र डालें। तो जो मैंने जहाँ जहाँ पर गया, मैं अपने हैदराबाद के गलियों में घूमा हूँ, वहाँ का गणेश का एक बार मैं आपको कैसे कैसे पंडाल मैंने देखे हैं, मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूँ। जैसे कि बेगम बाज़ार में मैंने देखा है कि गणपति बप्पा एक राजस्थानी स्टाइल में, और वहाँ पर गणपति बप्पा जी बैठे हैं ऊंट पे, कैमल पे, और एक जगह पर है वेंकटेश्वर स्वामी के अवतार में गणपति बप्पा। पहलवान गणेश को तो बहुत देखने को मिले हैं, जहाँ पर गणपति बप्पा का आकार एक पहलवान की जैसे बनाया जाता है। और वानपाल गणेश, यानी कि वनपाल यानी कि एक फॉरेस्ट जैसे, और बहुत ही हरे भरे माहौल में होते हैं गणपति बप्पा, या तो जंगल के अंदर होते हैं, यानी तो बप्पा को ही पूरे जंगल जैसे बना देते हैं हरे हरे भरे भरे में। और गोल्ड थीम और कुंदन गणेश, जी हाँ, गोल्ड और हीरे से बने हुए गणेश, उनके बारे में भी हमने बात किया था, जो कि बेगम बाजार में था। और भाग्यनगर का राजा, फील खाने का राजा, और दोस्तों एक और है कि जो हमने बात किया था, 24 कैरेट्स गोल्ड कोटेड गणेश, पर्ल्स हैंगिंग शिवा गणेश। जी हाँ, यहाँ पर एक एक गणपति का पंडाल में ऐसा है जहाँ पर शिव जी की एक तस्वीर को एक पर्ल्स से बनाया गया है, पर्ल्स, और साथ ही वेंकटेश्वर स्वामी का अवतार और राधा कृष्ण जी का अवतार को भी पर्ल्स से लटकाया गया है। जी हाँ दोस्तों। और रही बात बाल गणेश, जी बाल गणेश जी जैसे कि वो एक मंकीज के साथ और हनुमान जी के साथ खेल रहे हैं, और उनकी माँ उनको डांट रही है, बहुत ही प्यारा गणपति पप्पा थे। और जगन्नाथ गणपति, जी हाँ, जगन्नाथ स्वामी के अवतार में भी दो चार गणपति पप्पा के पंडाल मिल जाते हैं हमको बेगम बाजार में। और कृष्ण गणपति, जहाँ पर कृष्ण भगवान गणपति बप्पा को कैरी कर रहे हैं, और एक जगह पर ये भी है जहाँ पर दो चूहे यानी कि दो मूषक गणपति बप्पा को कैरी कर रहे हैं ऐसा, और शिव जी के गोद में बैठे हुए गणपति। जी हाँ दोस्तों। और अगर मैं घोषामेल की बात करूँ, जहाँ पर एलिफेंट पर गणपति बप्पा दिखते हैं, और राधा कृष्ण के अवतार में भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जैसे कि कार्टून स्टाइल में बनाया गया मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। और रही बात चूड़ी बाजार की, चूड़ी बाजार में कृष्ण गणपति यानी कि एक कृष्ण के अवतार में जो पूरा ब्लैक है और गणपति बप्पा के अवतार में बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ पर एक सिद्धि विनायक जो कि हमारे मुंबई में है, वहाँ का एक रेप्लिका जैसे यहाँ सिद्धि विनायक गणपति बप्पा भी बनाए हैं चूड़ी बाजार में। और रही बात चूड़ी बाजार में, एक जगह पर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग थीम को लेकर बनाया गया है, जहाँ पर गणपति बप्पा के एक खड़े होने की बहुत ही लंबी मूर्ति, और साथ में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए इंडियन नेशनल फ्लैग किस तरह से इवॉल्व हुआ है उसके बारे में बताया, और एक जगह पर सोलार सिस्टम का थीम में गणपति बप्पा को बताया है। जी हाँ, जहाँ पर चारों जगह पर आसमान में और नीचे भी पूरे जगह पर ऐसा रहता है कि जैसे कि कोई एक अंतरिक्ष हो, और वहाँ पर सारे प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स के बीच में गणपति बप्पा है। और एक जगह पर महाकाल लोक बनाया है, जहाँ है चूड़ी बाजार में, इतना खूबसूरत महाकाल लोक बनाया है जहाँ पर शिव जी है, और उनके शिवगण हैं और गणपति पप्पा बीच में बैठे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और एक जगह पर तीन सिर वाले गणपति पप्पा बनाया है, जो कि है उस्मानगंज में। अभी हम अगर उस्मानगंज की तरफ आए तो वहाँ पर तीन सिर वाला गणपति और कार्तिकेय गणपति, जी हाँ, कार्तिकेय ये एक अवतार है जो कि है गणपति बप्पा के भाई, जी हाँ, तो उनके भाई के अवतार में भी गणेश जी को बना दिया इन लोगों ने, और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा थीम रखा इन लोगों ने इंडियन वॉरियर्स को रखा है, जहाँ पर महाराणा प्रताप, राजेंद्र चोला, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, श्री कृष्ण देवराया, इनके इनके इनके भी मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित किए गए ताकि लोगों को बता सके। और वहाँ पर काल भैरव का एक गणपति मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, जो कि काल भैरव जो कि एक या तो मुझे लगता है वो वुल्फ है या नहीं तो एक डॉग है, उसके ऊपर बैठे हुए थे गणपति पप्पा। और एक जगह पर केदारेश्वर केव टेम्पल, जहाँ पर कॉस्मिक
एजेस के बारे में बताया जहाँ पर है इसका ये

0: असली का है केदारेश्वर केव टेम्पल का। यहाँ पर गणपति बप्पा को बीच में रखते हैं शिव जी के साथ, जो कि रेप्लिका है केदारेश्वर केव टेम्पल का, जहाँ पर चार स्तंभ होते हैं जिसमें से तीन स्तंभ टूट चुके हैं और एक स्तंभ जो कि हमारे कॉस्मिक ईयर्स यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं, और कलयुग का स्तंभ अभी भी है। और कहते हैं कि जिस दिन वो स्तंभ गिरेगा उस दिन कलयुग का अंत होगा, देखा जाएगा। खैर, और मैंने पूरा लिस्ट लिख कर रखा है दोस्तों आपको बताने के लिए, क्योंकि सभी लोग तो जा नहीं पाए, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कैसे कैसे गणपति यहाँ बप्पा को रखे हैं पंडाल में। और आगे बढ़ने से पहले अभी एक गाना बजा देता हूँ जो कि हर पंडाल में बहुत ही कॉमन हो चुका है। जी हाँ, आप खुद ही सुनिएगा।
1: External Affairs Minister Jay Shankar holds bilateral meetings with foreign leaders on UNGA sidelines. India reaffirms support for two-state solution to Israel-Palestine conflict at UNGA. Iran offers seven-day plan to end West Asia conflict, reopen Strait of Hormuz. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in eighth round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand.

वीण घट में जोत है जोत में घट जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे ओम शिव गोरक्ष।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, स्टूडियो में 12:16 हो रही है और आप सुन रहे FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो जी हाँ दोस्तों, ये था गाना आदेश अलक निरंजन, जो कि मैंने देखा कि हर पंडाल में ये गाना जरूर बज रहा है। हालांकि ये गणपति जी के पप्पा का गाना है जो कि शिव जी का है, तो बहुत ही खूबसूरत गाना था ये, बहुत ही धमाकेदार गाना। दोस्तों हम चलते हैं हमारे विसर्जन प्रोग्राम की तरफ। तो आज 25 सितंबर है और गणेश चतुर्थी के इस पावन दिनों का आज अंतिम दिन है, और हैदराबाद में आज हर तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया और अगले बरस तू जल दिया। जी हाँ दोस्तों, हम गणपति बप्पा को विदा करते करते हम उन्हें ये कहते हैं कि अगले वर्ष यानी कि अगले वर्ष वो हमारे यहाँ पर जल्दी लौट कर आए। जी हाँ दोस्तों, तो अभी बात हैदराबाद की गलियों की हो रही थी, और अगर मैं बात करूँ कोटी की, जो कोटी जगह है वहाँ पर काल भैरव, उनके अवतार में गणपति बप्पा और उनके पैरों के नीचे एक खोपड़ी ऐसे आकार में बनाया गया, और एक जगह पर सिंदूरी गणेश और एक जगह पर मोटा गणेश जिसका सर ग्रे है, यानी कि एक एलिफेंट का सर जैसा, जो ओरिजिनल ओरिजिनलिटी दिखाता है, जो गणपति बप्पा का जिस तरह से प्राकृत्य हुआ था। और गणेश जी एक गरुड़ पर बैठे हैं और वो अवतार है नारायण जी का, और एक जगह पर गणपति बप्पा पीकॉक पर बैठे यानी कि मोर पर बैठे हुए, जो कि कार्तिकेय का अवतार है, और एक जगह पर मैंने देखा है कि गणपति बप्पा लोटस पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, और एक जगह पर रामदेव बाबा की स्टोरी। जी, और रही बात बहादुरपुरा की, जहाँ पर दोस्तों ये तो सारे बच्चों का फेवरेट गणपति बप्पा होंगे, ये गणपति बप्पा बनाया गया है कैंडी से। जी हाँ, कैंडी गणेश, जहाँ पर उनकी एक बड़ी सी 5 फीट की मूर्ति, और उस पूरी मूर्ति पर चिपके हुए थे कैंडीज, तरह तरह के अलग अलग चॉकलेट्स एंड कैंडीज चिपके हुए थे, और बहुत भीड़ बनी थी वहाँ पर उस गणपति बप्पा को देखने के लिए। और एक जगह पर जो कि आता है दूधबौली में, राधा कृष्ण का गणपति बप्पा, और उसका थीम है गणपति बप्पा तक पहुंचने के लिए आपको एक मेज का डोर्स का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को याद हो, हम एक बचपन में एक शो देखते थे तकाशीस कासल करके, और उसमें दरवाजे ही दरवाजे होते हैं एंड तक पहुंचने के लिए। एक दरवाजे के एक जैसे ही हम एक दरवाजों के कमरे में घुसते हैं, वहाँ पर 5 से 6 और दरवाजे होते हैं, वैसा ही एक मेज डोर कहा जाता है उसको। वैसा ही सेम टू सेम थीम बनाया गया है दूधबौली में, बहुत ही मज़ेदार था वो वाला तो, और बप्पा राधा कृष्ण के अवतार में थे, बहुत खूबसूरत। और एक जगह है कबूतर खाना करके, वहाँ पर वृंदावन का थीम बनाया गया। जी हाँ, वृंदावन का थीम बनाया गया वहाँ पर, और बहुत ही प्यारे से नन्हे से गणपति पप्पा थे वहाँ पर। और रही बात, अगर मैं रैंडमली बात करूँ हैदराबाद में जो प्रमुख जो मेन इम्पॉर्टेंट थीम्स है, जहाँ पर अमरनाथ का थीम बनाया गया है LB नगर में, जो कि दर्शाता है पूरा अमरनाथ का जगह कैसा बना कैसा रहता है। और एक और जगह अमरनाथ का ही थीम बनाया गया है, जहाँ पर बप्पा जी शिव जी के अवतार में हैं, और उनके पास एक मतलब 3-4 पीजेंस यानी कि कबूतर उनके पास ही रहते हैं।

रहते हैं और वो कहीं नहीं जाते हैं, वैसा थीम जिस तरह सेम टू सेम अमरनाथ में होता है। और एक जगह पर पंचतत्व थीम, यानी कि पंचतत्व यानी आग पानी, इस तरह से जो पंचभूत और पंचतत्व होते हैं उस तरह का एक तारनाका में यहाँ पर मंडप सजाया गया था, बहुत ही खूबसूरत था। और एक जगह है चंपापेट करके, वहाँ पर स्केरी केव थीम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही मज़ेदार थीम बनाया, जहाँ पर एकदम डरावना हो, गणपति बप्पा तक पहुँचने के लिए हमको एक गुफा के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर इन लोगों ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं लोगों को डराने के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भयंकर था, खूबसूरत नहीं। और हाँ, अंदर जाने के बाद बप्पा तो खूबसूरत रहते ही हैं। और 72 फुट गणपति बप्पा के तो बारे में हम लोगों ने बात की है, जो इको फ्रेंडली में बनाया है, जो कि नागोल में है। और एक और गणपति बप्पा के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है, जो कि है गणेश दैट स्पार्कल्स, यानी कि लीची का राजा, जो कि पर्ल्स एंड ज्वेल्स के साथ बनाया गया बेगम बाजार में है। इसको बनाने के लिए 3.8 लाख अमेरिकन डायमंड स्टोन्स और 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग किया गया है। टू और एक जगह है जहाँ पर 2.5 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़ ग्लास पीसेस, यानी कि कांच के टुकड़ों के साथ सजावट किया गया है गणेश मंडप बनाने के लिए, जो कि है वनस्थलीपुरम के पास। और वनस्थलीपुरम के पास एक और बनाया गया यादाद्री का थीम, यानी कि हमारे यादगिरी गुट्टा का थीम। और मैं एक और 5 थीम्स बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं हमारे गाने की तरफ और हमारे विसर्जन के सिलसिले की तरफ। और ये है एक और विक्टोरिया मेमोरियल में दरबार जैसे थीम, जहाँ पर गणपति बप्पा जैसे राजा जैसे हैं और बैठे हुए, और एक राज दरबार का थीम बनाया गया, जहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत है वहाँ पर उस मंडप को देखने के लिए, उस पंडाल को देखने के लिए। और एक है वनस्थलीपुरम में फॉरेस्ट टेम्पल जैसे, जैसे कि एक मंदिर जो कि एक जंगल से बना हुआ हो, बहुत ही खूबसूरत से उसमें पक्षियाँ और कुछ जंतुओं के आकार रखे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और एक जगह पर ओल्ड सिटी में 3D शो, जी हाँ 3D शो, यानी कि गणपति बप्पा के मूर्तियों का 3D शो बनाया गया है, वो भी शो बहुत ही मस्त था। और एक जगह पर राम सेतु का निर्माण, जी हाँ गोशामेल में राम सेतु निर्माण करते हुए एक गणपति बप्पा की मूर्ति वहाँ पर ऊपर स्थापित की गई है, और साथ में उनके आगे सारे वानर सेना जो है वो एक राम सेतु बना रहे थे, जो ठीक उस तरह जिस तरह रामायण में दिखाया गया, जो कि है गोशामेल में। और एक जगह पर गणपति बप्पा जी एक हिरण के सिर यानी कि मस्तिष्क पर बैठे हो, बहुत ही खूबसूरत से। और ये तो बहुत ही कुछ है भाई साहब, इतने सारे हैं, अगर मैं काउंट बता दूं कितने गणेश के मूर्तियाँ मंडप और ये सब बैठे हैं हमारे हैदराबाद में, मैं अब परेशान हो जाओगे। मैं आपको ये बताऊंगा अगले मेरे सेगमेंट में, जो अगले जॉक टॉक में, जो कि एक गाने के बाद आने वाला है।

सूर निरागस हो, जिसको गाया है शंकर महादेवन ने, बहुत ही जबरदस्त गाना। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिलसिले की तरफ, जो कि है गणेश विसर्जन के ऊपर। दोस्तों आज 25 सितंबर है, गणेश चतुर्थी के इस पावन दिनों का आज अंतिम दिन, और हैदराबाद में आज हर तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जो कि है गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरसू चल दिया। लेकिन दोस्तों आज का दिन सिर्फ आस्था और सेलिब्रेशन का नहीं है, आज हैदराबाद के सामने एक बहुत बड़े मैनेजमेंट चैलेंज भी है। जरा एक नंबर सुनिए, इस साल हैदराबाद रीजन में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पब्लिक गणेश पंडाल्स ऑफिशियली सेटअप हुए। जी हाँ, 1.5 लाख गणेश पंडाल, सही सुना आपने। और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के ट्रैकिंग के मुताबिक हैदराबाद, साइबराबाद, मलकाजगिरी एंड और फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट्स को मिलकर ये संख्या लगभग 1.5 लाख तक पहुंचती है। और अगर पब्लिक पंडाल्स के साथ घर घर में स्थापित गणेश आइडल्स को भी इंक्लूड किया जाए, और अपने पर्सनली अपने ही आंगन में और अपने ही सोसाइटी में रखे हुए अगर हम मूर्तियों को भी हम इंक्लूड करते हैं, तो संख्या करीब करीब 2 से 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से भी ज़्यादा होने का एस्टिमेट है। अब सोचिए, इतनी सारी मूर्तियाँ, इतने सारे डिवोटीज, इतनी सारी पोजिशंस और डेस्टिनेशन।

मिशन सिर्फ एक, हैदराबाद और सराउंडिंग एरियाज में डिफरेंट डिजिग्नेटेड इमर्जन पॉइंट्स और वाटर बॉडीज का यूज किया जा रहा है ताकि पूरा प्रेशर एक ही जगह ना आए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यहाँ पर क्या किया जाता है, मैनेजमेंट जो है ना, आर्टिफिशियल पाउंड्स यानी कि आर्टिफिशियल तालाब, जिस तरह हम लोग गणपति बप्पा को टैंक बंड में विसर्जन करने के लिए हम लोग इतने उत्साह से आते हैं, और हमको प्रकृति और इस पानी यानी कि हमारे टैंक बंड का भी हम अगर सोचे तो वो ज़्यादा खराब ना हो, तो इसीलिए आयोजन किया गया है आर्टिफिशियल पाउंड्स यानी कि आर्टिफिशियल तालाब, जो कि है इमर्शन पाउंड्स बोल के बोलते हैं इसे। तो इन सबको ना जगह जगह पर, हर जगह पर बनाया गया ताकि हम सभी सिर्फ एक ही जगह पर प्रेशर ना डालकर इन सारी जगह पर हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखिए आपने आंकड़े कितने ज़्यादा है, और ग्रैंड पोजिशन से पहले भी हैदराबाद में काफ़ी बड़े स्केल पर इमर्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी। जी हाँ, 23 सितंबर तक यानी कि 23 सितंबर तक साइबराबाद जोन में ही 1.03 लाख से ज़्यादा गणेश आइडल्स का इमर्शन कंप्लीट हो चुका था, और फेस्टिवल के एक वीक में ही चारों पुलिस कमिश्नरेट्स को मिलाकर 43,000 से ज़्यादा स्मॉल आइडल्स यानी कि छोटे आइडल्स पहले ही विसर्जित हो चुके हैं। जी, और इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था आज के फाइनल ग्रैंड पोसेशन यानी कि विसर्जन के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि छोटी मूर्तियों को पहले विसर्जन किया जाता है यानी कि निमज्जन हो जाता है, और आज के दिन बड़े और मेजर प्रोसेशंस को सिस्टमैटिकली मैनेज करने की प्लानिंग की गई। जी हाँ दोस्तों, और आज हैदराबाद की रोड्स पर सिर्फ पुलिस पर्सनल ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूअसली काम कर रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। हैदराबाद का सिटी पुलिस ने क्राउड और प्रोसेशन का मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए 24 ड्रोन्स, 10,000 CCTV कैमरे और 100 हाई राइज कैमरास डिप्लॉय किया है। सोचिए, आसमान से ड्रोन्स मॉनिटरिंग कर रही है, हाई राइज बिल्डिंग से कैमरे इंपॉर्टेंट रूट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ग्राउंड पर पुलिस और वॉलेंटियर क्राउड मूवमेंट को मैनेज कर रहे हैं। ये कंडीशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हजारों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो है टैंक बंड। क्यों? क्योंकि महागणपति और हैदराबाद के सारे प्रमुख गणेश के मूर्तियों का विसर्जन देखने के लिए, और ये मैसिव बप्पा जो है खैरताबाद गणपति बप्पा, आज ही के दिन इनका विसर्जन होगा हमारे टैंक बंड में। जी हाँ, और ये पोजीशन का एक मेजर अट्रैक्शन है हमारे हैदराबाद के कल्चर का। जी हाँ दोस्तों, और जो होने वाला है टैंक बंड में और हुसैन सागर के रूट में, बालापुर टू हुसैन सागर के रूट में, इस तरफ बड़ा भीड़ रहेगा आज। लेकिन दोस्तों, गणेश विसर्जन की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है एनवायरनमेंट। जी हाँ, प्रकृति। बप्पा की पूजा हम नेचर के बीच करते हैं, और इसीलिए बप्पा की विदाई के वक्त भी नेचर का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बारे में हम बात करेंगे एक गाने के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडियो में 12:40 हो रही है और हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की। जी हाँ, विसर्जन और एनवायरनमेंट का। तो बप्पा की पूजा हम नेचर के बीच करते हैं और इसीलिए बप्पा की विदाई के वक्त भी नेचर का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी वजह से हैदराबाद में आर्टिफिशियल इमर्शन पाउंड्स और डिजिग्नेटेड इमर्जन फैसिलिटीज़ का भी अरेंजमेंट भी किया गया है। स्पेशली पीओपी के आइडल्स यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के आइडल्स के नेचुरल वाटर बॉडीज में इमर्शन को लेकर एनवायरनमेंट कंसर्न होता है। तो इस कंसर्न के लिए इसीलिए कंट्रोल्ड इमर्शन के लिए आर्टिफिशियल पाउंड्स और डिजिग्नेटेड फैसिलिटीज़ का यूज़ किया जा रहा है हमारे हैदराबाद में। और हम लिजनर्स से भी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे जब भी आप गणपति बप्पा की मूर्ति एस्टैब्लिश करें तो पॉसिबल हो तो क्ले या इको फ्रेंडली आइडल्स को चूज़ कीजिए। बप्पा की आस्था भी रहे और हमारे हुसैन सागर, हमारे लेक्स और हमारे एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज हैदराबाद में एक तरफ आस्था का महासागर है और दूसरी तरफ है लाखों मूर्तियों का सेफ्टी मैनेजमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुलिस, सिविल अथॉरिटीज़, वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम और सबसे इम्पॉर्टेंट आप और हम, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर हम बैरिकेड्स फॉलो करें, पुलिस और वॉलंटियर्स का इंस्ट्रक्शंस माने, प्रोसेशंस के बीच अननेसेसरली एंटर ना करें, वहाँ पर कोई ताक झाँक ना करे और कोई छेड़खानी ना करे उन विसर्जन के अरेंजमेंट्स के साथ, बच्चों बच्चे और सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें, तो ये सेलिब्रेशंस और भी सेफ बन सकता है। और जब बप्पा की विदाई हो तो हमारे दिल में एक ही फीलिंग होनी चाहिए, बप्पा आप अगले साल फिर आइएगा, वो भी जल्द ही, और हैदराबाद को हम तब तक सेफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे और ग्रीन रखेंगे। गणपति बप्पा मोरया। चलिए सुनते हैं एक गाना।

गजानना गणराया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गाना था ये बाजीराव मस्तानी फिल्म का। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे विसर्जन के स्पेशल प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों, गणपति बप्पा की पूजा हो रही है और इस बीच हम अगर प्रसाद की बात ना करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्या बोलते हो? वैसे भी इंडियन फेस्टिवल में एक यूनिवर्सल रूल है, पूजा में कितना भी टाइम लगे, प्रसाद का प्लेट आते ही सबकी अटेंशन 100% हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और गणपति बप्पा के प्रसाद की तो बात ही अलग है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं गणपति बप्पा की पूजा सुबह होती है और शाम को होती है, और सुबह एक प्रसाद, शाम को एक प्रसाद। भाई बच्चों की तो वाहवा ही वाहवा है, और सिर्फ बच्चे ही क्यों, यहाँ पर हम सब भी, इंक्लूडिंग मी एंड आप सब लोगों को बहुत ही पसंद रहता है, क्योंकि गणपति बप्पा का ना इस ये टाइम का, ये महोत्सव के टाइम का प्रसाद की बात ही अलग होती है। और भाई साहब, अगर मैं पंडालों की बात करूं तो बाप रे बाप, जैसे मैंने बताया एक जगह पर कैंडी गणेश जो स्थापित किया गया है, वहां का प्रसाद क्या हो सकता है भला, जब गणेश, गणपति बप्पा का नाम ही कैंडी गणेश हो, प्रसाद भी कैंडी ही है भाई वहाँ पर। बहुत मस्त है यार, बच्चे तो बहुत लोग थे वहाँ पर, और बेगम बाजार साइड में तरह तरह के प्रसाद। जी हाँ, आप मतलब गेस भी नहीं कर सकते हो ऐसे प्रसाद, क्योंकि मैंने एक जगह पर देखा है जहाँ पर प्रसाद एक पानी पूरी यानी कि गोल गप्पा भी प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, पैक्ड फूड भी प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, कहीं उपमा दे रहे हैं, कहीं लड्डू दे रहे हैं, कहीं मोदक दे रहे हैं, कहीं हलवा दे रहे हैं, तो कहीं उनरालू दे रहे हैं, और उतना ही नहीं, कहीं इडली डोसा वड़ा ये भी दे रहे हैं। जी हाँ, और सुनने में तो अजीब लगेगा लेकिन इतना भीड़ है वहां पर, बहुत सारा भीड़। जी हाँ दोस्तों, और एक और बात, आज हैदराबाद से निकलेंगे, थोड़ा महाराष्ट्र जाएंगे, क्या बोलते हो, साउथ इंडिया जाएंगे और बंगाल भी जाएंगे। और जाएंगे क्यों, वहाँ के मिठाइयों के और प्रसाद के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इस सेगमेंट में मिठाई के बारे में बात करने वाला हूँ। और चलिए अब हम पहले चलते हैं महाराष्ट्र के मोदक के पास, और मैं बताऊंगा कि ये प्रसाद जो है किस चीज़ से बनते हैं। सो सबसे पहले महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है एक चीज़, वो है उकड़ीची मोदक। जी हाँ, उकड़ीची मोदक यानी कि स्टीम्ड मोदक, जहाँ पर मोदक को स्टीम करके बनाया जाता है, उसका एक आउटर कवरिंग के लिए जनरली यूजुअली एक राइस फ्लोर का यूज़ करता है, और अंदर का जो फिलिंग होता है, जो मीठा वाला, उसे बनाया जाता है ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट से और गुड़ या शुगर से और थोड़ा सा कार्डमम। जी हाँ, और कभी कभी इसमें अगर ड्राई फ्रूट्स हो तो और भी मज़ा आ जाता है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ रहता है, लेकिन टेस्ट बप्पा का फेवरेट होने की वजह से ऑब्वियसली मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलते हैं इसको। और मोदक की वेराइटीज़ भी, फ्राइड मोदक, चॉकलेट मोदक, ड्राई फ्रूट मोदक, आजकल तो मोदक का ना मेन्यू भी किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है दोस्तों। जी हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ मोदक ही नहीं, पुरनपोली भी फेस्टिवल ओकेशंस पर बनाया जाता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स चना दाल, जैगरी यानी गुड़, वाइट व्हीट फ्लोर या मैदा और कार्डमम और घी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ बप्पा का मोदक और दूसरी तरफ गरम गरम पुरनपोली, और हम जैसे लोग बस डिसाइड करते रह जाते हैं कि पहले क्या खाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम हमारा सेगमेंट आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा और कुछ अलग अलग जगह के तरह तरह के प्रसाद, और उसके उस उससे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल डिशेस है। और उससे पहले एक छोटा सा गाना। दोस्तों, वैसे तो अभी तक हम बात कर रहे हैं प्रसाद की, और प्रसाद हर बच्चों का फेवरेट होता है, तो इसीलिए ये गाना बहुत लोगों को अपना बचपन याद दिलाएगा, और ये गाना मेरा भी बहुत फेवरेट है। सुनिएगा कौन सा है।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के।

वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, ये था गाना बाल गणेश से, शंकर जी का डमरू बाजे। ये एक कार्टून मूवी है दोस्तों, जो मूवी का नाम है बाल गणेश। और यहाँ पर गणपति बप्पा जी अपने बचपन के घर में रहते हैं, और एक स्टोरी है जहाँ पर गणपति बप्पा ना शिव जी का डमरू लेके भाग जाते हैं और नाचने गाने लग जाते हैं। उतने में पार्वती जी आके उनका कान पकड़ लेती है, बड़ा वाला। तो दोस्तों, एक क्विक अपडेट, हमारे बड़े गणपति बप्पा, जी हाँ, यानी कि खैरताबाद का गणेश, अभी टैंगमेंट के पास पहुंच चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर अरेंजमेंट्स चालू है। यहाँ पर अरेंजमेंट्स, यहाँ क्रेन का अटैचमेंट्स का अरेंजमेंट जो चलता है वो ऑलरेडी हो रहा है, और अभी किसी भी वक्त हमारे गणपति बप्पा विसर्जित होने के लिए रेडी हो सकते हैं। और मुझे तो लगता है शायद गणपति पप्पा को भी जाने का मन नहीं होगा, जिस तरह से हमें उनको भेजने का मन नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो हमने बनी बनाई परंपरा है हमारी। और कोई बात नहीं, अगले साल फिर ज़रूर वापस आ जाएंगे, और अगले साल भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए तो हम बोलते हैं अगले बरस तू जल्दी आ। जी हाँ दोस्तों, और हम बात कर रहे थे प्रसाद की। जी हाँ, तरह तरह के प्रसाद जहाँ हमारे इंडिया में, या हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में, जगह हर जगह पर अपने लोकल लोकल के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक यहाँ पर प्रसाद बनाते हैं। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, अब चलिए हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में गणपति बप्पा को विनयागार और कई जगह पर पिल्लैयार कहते हैं। जी हाँ, पिल्लैयार बहुत ही प्यारा नाम है ना। और यहाँ एक फेमस ऑफरिंग है, कोजू कटाई। सुनने में नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कोजू कटाई, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट काफी सिंपल है। राइस फ्लोर या मैदा, खोबरा यानी कोकोनट, और गुड़, बस इतना ही। सेम अपने मोदक जैसे ही बनता है यार ये, बस यहाँ पर नाम अलग है। ये बेसिकली इसको स्टीम्ड राइस फ्लोर डम्पलिंग विथ स्वीट कोकोनट जागरी फिलिंग भी कह सकते हैं। अब कर्नाटक की तरफ चलिए, यहाँ पर कडाबू यानी कि कडूबू भी गणपति बप्पा के फेस्टिवल से एसोसिएटेड ट्रेडिशनल ऑफरिंग है। जी हाँ, एक और बार बोल देता हूँ, कडूबू। बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है ना। इसमें जनरली राइस फ्लोर या मैदा, कोकोनट और जगरी, सेम बस नाम अलग, और इतने ही यूज होते हैं। और साउथ इंडिया में तो ना गणपति बप्पा के साथ एक और सिंपल फेवरेट, पायसम। जी हाँ, पायसम यानी कि खीर, और वो बनता है सिर्फ दूध, चावल या नहीं तो सेमिया, और चीनी से, या नहीं तो फिर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू और किशमिश हो जाए तो वाह भाई वाह, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ हमारे साउथ इंडिया में एक और चीज़ भी बहुत ही फेमस है, और वो है उंड्रालू। जी हाँ दोस्तों, उंड्रालू हमारे साउथ इंडिया में लगभग हर घर में बनता है। जी हाँ, और इसका इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ गेहूं का आटा, जैगरी।

और क्या बोलते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसमें होता है खसखस जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो बहुत इतने ही सिंपल सिंपल चीज़ों से बनता है, और कहीं जगह पर इसको दूध से भी बनाया जाता है दोस्तों, और दूध से ना बहुत ही मस्त रहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक और गाना बजाते हैं। अभी हम उन लोगों ने उनरालू नाम लिया ही है, तो चलिए उसका ही गाना बजा देते हैं।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

तो वेलकम बैक दोस्तों, स्टूडियो में 1:07 है। मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज जो है एक स्पेशल प्रोग्राम चालू है अभी इस वक्त 10 बजे से 2 बजे तक, जो है विसर्जन स्पेशल। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज कॉलिंग सेगमेंट नहीं होने वाला है। और रही बात अगर हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो अभी बात चल रही थी प्रसाद के बारे में। जी हाँ, और हम लोगों ने अभी एक गाना सुना है जो कि था डंडालैया उंडरालैया। यहाँ पे उंडरालैया यानी कि उंडरालू जो होता है ना, वो एक टाइप ऑफ डिश है जो कि एक टाइप ऑफ स्वीट है। और ये था फ्रॉम द फिल्म कूली नंबर 1, जिसमें एक्टर है वेंकटेश और एक्ट्रेस है तबू जी। और इसको गाना गाया है हमारे SP बाला सुब्रमण्यम जी ने। तो दोस्तों, अगर हम अब चले बंगाल की तरफ, जी हाँ बंगाल, तो एक एक नंबर मिलता है स्वीट्स के मामले में। जी हाँ, फर्स्ट प्लेस बंगाल का स्वीट्स का नाम आया और मुंह में ऑटोमेटिकली मिठास आ गया। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी की ऑफरिंग्स और बंगाली स्वीट्स, जी हाँ, में नारकेल नारू या कोकोनट लड्डू एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल ऑप्शन है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स नाम में ही है, यानी कि ग्रेटेड कोकोनट यानी कि खोबरा जी, और जैगरी गुड़ या नहीं तो फिर शुगर, और थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर के लिए कार्डमम। बस कुछ सिंपल चीज़ें और एकदम ब्यूटीफुल स्वीट। और बंगाली की मिठास की बात हो और संदेश का नाम ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है भैया, क्योंकि संदेश का बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है छेना, दूध का छेना और चीनी, और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कार्डमम। और अगर कभी आपको सैफ्रन डालना है तो सैफ्रन यानी कि कुमकुम, और अगर आपको डालना यानी कि केसर होता है, और अगर आपको डालना होता है ड्राई फ्रूट्स तो आप ड्राई फ्रूट्स भी बना सकते हो। और अगर आज के बात आज जिस तरह हम लोगों ने मोदक के बारे में बात किया, संदेश में भी बहुत से फ्लेवर्स आ गए, जैसे कि आपको चॉकलेट होना है, मैंगो होना है, और जिस ढंग से आपको बनाना है उस फ्लेवर का ढंग से आप बना सकते हो। और मोदक के साथ मिष्टी भी मिलेगी, जी हाँ। और रही बात बंगाल की, मुझे याद आती है एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश, वो है मिष्टी धोई, जो कि होता है स्वीट कर्ड योगर्ट। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत होता है, जी हाँ दोस्तों। और अगर हम बात करें गुजरात की हम बात कर ले या नहीं तो फिर एक गाना सुन ले। चलिए सुनते हैं एक गाना।

0: दोस्तों, अभी हम सुनेंगे ब्रॉडकास्ट ऑफ 35th एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज, जो कि है पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: कैंसर में भी ओबेसिटी या मोटापा होने से इसका खतरा बढ़ जाता है। कई बार ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स लंबे समय तक एस्ट्रोजन के संपर्क में रहने या अधिक संख्या में ओवल्यूशन साइकिल से जुड़े होते हैं। अतः यदि कम उम्र में 12 वर्ष से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाए और रजोनिवृत्ति देर से 50 वर्ष की उम्र के बाद हो तो ये इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। कभी गर्भधारण ना करना, पहला बच्चा 30 वर्ष की आयु के बाद होना या बच्चे को स्तनपान ना कराना इत्यादि भी ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। यदि महिला को स्वयं या उसकी बहन, माँ, मौसी, नानी इत्यादि को स्तन, गर्भाशय, अंडाशय या कोलोरेक्टल कैंसर का इतिहास रहा हो तो महिला को भी इसका खतरा हो सकता है। यदि उसे स्वयं या उसके परिवार में BRCA1 या BRCA जीन म्यूटेशन पाया गया हो तो महिला के लिए भी ये एक रिस्क फैक्टर है। परंतु घबराइए मत, इन रिस्क फैक्टर्स के होने का ये मतलब नहीं कि आपको कैंसर हो ही जाएगा। परंतु हाँ, सतर्क अवश्य रहना चाहिए और जहां तक हो सके इन जोखिम कारकों से बचे। तो बचाव किस तरह संभव है? अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय के कैंसर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो रिस्क फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं ही नहीं, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे अनुवांशिकी, हेरिडिटरी बीमारियां। यदि महिला के परिवार में उसकी माँ, बहन, मौसी, नानी इत्यादि को बीमारी थी तो पारिवारिक इतिहास तो हम बदल नहीं सकते। यदि BRCA1 और BRCA2 जीन्स म्यूटेशन था तो उसे तो हम बदल नहीं सकते। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं यानी जो परिवर्तन योग्य जोखिम कारक हैं, उनसे बचाव संभव है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें। कम फैट यानी कम वसा व अधिक फाइबर या अधिक रेशे वाले भोजन का संतुलित आहार लें। फल सब्जियों का भरपूर सेवन करें जिससे आपका भोजन संतुलित रहे और वजन ना बढ़े। नियमित व्यायाम करें, एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन शैली अपनाएं। यदि आप मोटापे से बचेंगी तो ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी कम होगा। कोशिश करें कि पहला बच्चा 30 वर्ष की आयु से पहले हो तथा बच्चे को स्तनपान कराएं। हार्मोन्स का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें इत्यादि। याद रखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है। अब इसका प्रबंधन एवं उपचार कैसे हो सकता है? यदि आपको ओवेरियन कैंसर हो भी गया हो तो भी डरने की कोई बात नहीं। आज इसके उपचार की कई विधियां उपलब्ध हैं और इसका सफल इलाज संभव है। परंतु हाँ, आवश्यक यह है कि इसका जितनी जल्दी निदान हो सके उतना ही सफल इलाज हो सकता है। देर करने पर कठिनाई हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव के प्रति सजग रहें और अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं। नियमित जांच कराने से बीमारी प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ी जा सकती है और आप लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। जांच की यह सुविधा इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंसर डिटेक्शन सेंटर में भी दी जाती है। यह सोमवार से शुक्रवार 9 से 12:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रक्त की जांच, छाती का एक्सरे, मुंह, गला, नाक, कान की जांच तथा महिलाओं एवं पुरुषों की अलग-अलग जांच, सब कुछ बहुत ही कम खर्च में की जाती है। हमारा पता है 42 बाबर रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली। 42 बाबर रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली, और टेलीफोन नंबर है 2371 6941, 2371 6941। साथ ही हमारी एक ICS हेल्पलाइन भी है, जिसमें फोन करके आप अपने किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकती हैं। इसका नंबर है 9910516562, 9910516562। इसके अलावा हमारी एक मोबाइल ऐप है, राइज अगेंस्ट कैंसर, जिसमें 5 भाषाओं में विभिन्न कैंसरों के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फोन पे डाउनलोड कर सकती हैं और ओवेरियन कैंसर सहित और भी कई कैंसरों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप हमारे डिटेक्शन सेंटर में आएं, अपनी जांच कराएं, कैंसर से बचें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
2: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
3: ये है

0: తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా DLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: वेलकम बैक दोस्तों, स्टूडियो में 1:21 हो रहे हैं और आप सुन रहे FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन. तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रसाद के बारे में, जहां हमारे हिंदुस्तान में तरह तरह के प्रसाद अलग अलग जगह कैसे कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं और इसको बनाना कितना सिंपल होता है और एक टेस्ट तो मन को भा जाता है. तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं गुजरात की तरफ, गुजरात के सुकदी और लड्डू. गुजरात फेस्टिवल फूड में सुकदी एक बहुत सिंपल और डिलीशियस स्वीट है. इसके इन्ग्रीडियंट्स व्हीट फ्लोर यानी मैदा, घी और गुड़, बस इतना ही. बस तीन ही इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है बहुत ही डिलिशियस प्रसाद या स्वीट. और इसीलिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कभी कभी प्रसाद के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी की होना ज़रूरत नहीं है. गुजरात में लड्डू की भी डिफरेंट वैरायटीज मिलती है, बेसन का, घी का और कभी कभी आटे का, कभी कभी रवा का. बहुत ही डिलीशियस होते हैं और दिखने में तो ऑब्वियसली खूबसूरत होते ही है. और एक लड्डू जो बेसन का बनता है, इसके इंग्रेडिएंट्स जिसमें चाहिए होता है बेसन, घी, चीनी या गुड़ कभी, और ड्राई फ्रूट्स, बस इसी में बन जाते हैं बेसन के लड्डू. मेरे मुंह में तो पानी आ रहे हैं यार इन सारे प्रसादों के बारे में बात करके. और फेस्टिव ओकेशंस पर अलग अलग रीजन्स प्रिपरेशन, यानी बप्पा के प्रसाद में भी इंडिया का डाइवर्सिटी क्लियरली दिखता है. क्या बोलते हो दोस्तों? और अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, जैसे कि मैंने बताया उंड्रालू के बारे में, एक और ख़ास बात बताऊँगा मैं उंड्रालू के बारे में. और गणेश चतुर्थी या यहाँ पर जो मनाया जाता है विनायक चतुर्थी के साथ एसोसिएटेड एक ट्रेडिशनल ऑफरिंग है उंड्रालू. और ये नाम याद रखना क्योंकि ये हमारे रीजन की एक खास पहचान है. जी हाँ, उंड्रालू. और उंड्रालू भी बेसिक इंग्रेडिएंट से बनता है. वो बनता है आटा, चना दाल, सॉल्ट और घी. जी हाँ, सॉल्ट और घी. और ये दो प्रकार के बनते हैं, या तो आपको स्पाइसी में चाहिए या नमकीन में चाहिए, या फिर स्वीट में चाहिए. जी हाँ, अगर आपको इस चीज़ को मसाले के स्पाइसी यानी तो कोई नमकीन इंग्रेडिएंट्स में चाहिए, तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है. राइस, रवा, चना दाल, सॉल्ट और घी. और प्रिपरेशन का अकॉर्डिंगली सीजनल हम कर सकते हैं, जैसे कि जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च के साथ. और इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है ये वाला उंड्रालू, जो कि है स्पाइसी वाला वर्जन यानी नमकीन वाला वर्जन. अगर इसका स्वीट वाला वर्जन चाहिए तो ये बनता है राइस फ्लोर या राइस रवा, जैगरी यानी गुड़, कोकोनट यानी कि खोबरा या नारियल, और कार्डमम यानी इलायची. जी हाँ, इलायची हर स्वीट में कॉमन लग रहा है ना. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इलायची का फ्लेवर ना बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है. जी दोस्तों, और इस कॉम्बिनेशन में मिलता है बप्पा का फेवरेट, यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बने जाने वाला एक बहुत ही डिलीशियस डिश जो है उंड्रालू. जी, और अभी हम बात करते हैं केरला की. केरला की बात करने से पहले चलिए सुनते हैं एक गणपति बप्पा का गाना. और दोस्तों, ये गाना भी है ना बच्चों के लिए, क्योंकि ये गाना है फ्रॉम द फिल्म माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 2 का. जी दोस्तों, और आई होप हमें हमारे लिजनर्स में बच्चे भी शामिल है. और दोस्तों, एक क्विक अपडेट मैं दे दूँ, खैरताबाद गणेश जी ना ऑलरेडी पहुंच चुके हैं टैंगमेंट पे और विसर्जन होने के लिए रेडी है। यहाँ पर क्रेन का वर्क चल रहा है और लोग यहाँ पर इतने धूमधाम से नाच रहे, झूम रहे, गाने, ढोल, ताशा, ढोलक, तबला सब बज रहा है मस्त। और यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर देखा जा सकता है बूढ़े भी नाच रही है। पुलिस प्रशासन ये लोग भी इन्वॉल्व है और डेफिनेटली यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरी है। हम सबको रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि देखभाल रखना या नहीं तो फिर ख्याल करना या नहीं तो फिर प्रकृति का भी सेवा करना सिर्फ अधिकारण और प्रशासन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यदि आप टैंगमेंट के आसपास हैं तो कृपया करके सावधान रहिए। वहाँ की गाड़ियाँ बहुत धीरे ही चलेंगी, लेकिन फिर भी गाने की आवाज़ और डीजे साउंड सिस्टम, इनकी आवाज़ में हमको शायद देख ना सके या सुन ना सके। तो इसीलिए अपने आप को सावधान रखिए और अपनों को भी साथ रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बजाता हूँ मैं वो गाना जो भी मैंने बताया था। और दोस्तों गाना भी देखो, सात अजूबे और वो है आठ। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर बताते हैं गणपति बप्पा आठवें अजूबे है, लेकिन हमारे लिए तो वो तो पहले है यार।

0: दोस्तों, अभी आप सुनेंगे एशियन गेम्स गेम्स 2026 के अपडेट का।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों मेरे साथ इस समय यहाँ मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। घड़ी में बज रहे हैं दोपहर के 1:30। हम लेकर आ गए आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स। जी हाँ, सबसे पहला अपडेट आपको देने वाले हैं टेबल टेनिस की दुनिया में, जहां वुमेन्स डबल्स के हमने आज मुकाबले देखे, लेकिन उसमें कुछ खास अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास आप सबको देने के लिए, क्योंकि वुमेन्स डबल्स का जो पहला मुकाबला हुआ उसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास डिड ट्राई टू पुट अप अ फाइट against Man Kauai and Wang Manu, but ultimately their opponents were just too good for them, and as a result Shreeja Akula aur unke sath sath Cinderella Das lost the game 3-0. matlab bahut hi dominating a confident jeet samne se unke opponents ne aaj Shreeja Akula aur Cinderella Das ke upar hasil kari. Dusri taraf Yashaswini Ghorpade and Diya Chitale lost 0-3 to China's Wai

0: Chen and Shuhan Fan. The Indian pair went down 7-11, 5-11, 8-11, with the Chinese duo taking control early in the third game and opening up an 8-11 lead before India tried to fight back, but it was just too late. Aur din ki shuruaat mein humne dekha tha ki kaise Manush Shah also got the job done against Iran's Benjamin Faraji, sealing a convincing 4-0 victory. That was a good news that came around in table tennis. Aur uske saath saath, lekin uske baad aur koi good news humne mili nahi thi. We had the mixed doubles pair of Manav and Manush, who lost to Harimoto and Shinozuka of Japan. Then Yashaswini Ghorpade defeated Hen Zaza to reach the round of 16 in Asian Games. And the other thing was that Harmeet and Yashaswini were knocked out in the mixed doubles quarterfinals. Big news that came in was that Jia Chitale and Manush Shah have stormed into the mixed doubles semi-finals, jiska mukabla ab kal hoga hopefully. And yaha par umeed kar sakte hain ki Bharat ko shayad एक पदक अपने नाम मिले, लेकिन इट्स गोइंग टू बी स्टिल टू अर्ली शायद टू इवन से दैट.
1: इधर बैडमिंटन की बात कर लेते हैं साक्षी. बैडमिंटन में जबरदस्त रोमांचक मुकाबला चल रहा है. भारत का जो सबसे मजबूत जोड़ी भारत की है वो उतर चुकी है. हालांकि मुकाबला अभी बराबर चल रहा है. एशियन गेम्स का जो पुरुष युगल का मुकाबला, भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना थाईलैंड के पकापोन टिरास्कुल और पिराथचाई सुपकुंत के बीच हो रहा है. भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला गेम 21-12 से अपने नाम किया. हालांकि दूसरे गेम में थाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-19 से गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है. अब निर्णायक तीसरा गेम जारी है, जहां दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. हालांकि अभी थाईलैंड की जोड़ी ने 11-9 से बढ़त बना रखी है.
0: राइट, हॉकी की दुनिया से आपको थोड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं का मुकाबला हुआ जापान की महिलाओं के साथ, जहां भारत ने उनको 3-1 से, यानी जापान को 3-1 से हरा दिया इन द एशियन गेम्स. लालरिम सियामी और ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडियाज लीड विद नवनीत कौर एडिंग द थर्ड गोल. कोबाई खावा शीहु पुल्ड वन बैक फॉर जापान इन द फाइनल क्वार्टर, बट इंडिया हेल्ड ऑन कंफर्टेबली टू सील द विन. ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले के मुकाबले जो हमने भारतीय महिलाओं के देखे हॉकी के अंदर, उसमें काफी ज्यादा गोल्स करके भी भारतीय महिलाएं जीती, और शायद इस मैच में आपने उसकी कमी जरूर महसूस करी हो, लेकिन जीत तो भारत के नाम ही दर्ज हो गई. और अब भारत का एक और पूल मैच है सिंगापुर के खिलाफ, और उसके बाद भारत को आप खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल्स में इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द विमेन्स हॉकी मैच.
1: महिलाओं की बात आपने की, तो यहाँ डबल्स की, मैं मिक्स डबल्स की बात करना चाहूंगा. बैडमिंटन की खबर है, भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा करस्टो का मुकाबला मलेशिया के शेवन जेमई लाई और सून हुआट गो के बीच जारी है. भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 22-20 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बनाई, लेकिन दूसरा गेम बेहद कड़ा चल रहा है. दोनों के बीच में जो मुकाबला है, दूसरा गेम जो 21-21 की बराबरी पर अभी मुकाबला जारी है. यहां पर देखना होगा क्या भारतीय जोड़ी इस गेम को जीतकर मुकाबले को अपने नाम कर पाती है. आने वाला कुछ समय ही बता देगा आपको.
0: जी, और एक क्वेश्चन की दुनिया से भी आपको अपडेट दे देती है कि जहां हमने पिछली बार देखा था कि भारत की टीम ने गोल्ड हासिल किया था टीम रिसर्च के ये लास्ट एडिशन में, वहीं अब इस बार भारत ने चौथे स्थान पर फिनिश किया है बिहाइंड चाइना जापान कोरिया. प्रीटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज. भारत का टोटल रहा था 201.97 पॉइंट्स, एंड एज अ रिजल्ट इट वाज जस्ट नॉट इनफ फॉर द इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर्स टू इवन स्टैंड इन कॉम्पिटिशन विद द अदर कंट्रीज. शाहिद,
1: जिस खबर की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है. भारतीय जोड़ी 23-22 से यहाँ पर जो दूसरा गेम है वहां आगे है, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है. बात सर्फिंग की कर लेते हैं यहां से भी कुछ, हालांकि बहुत अच्छी खबर नहीं, फिर भी जो आपको अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा जो सर्फिंग से खबर है. किशोर कुमार ने हीट जीतकर दूसरे दौर में जरूर जगह बना ली है. भारत के किशोर कुमार ने 9.33 के स्कोर के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया और दूसरे दौर में जगह बनाई. उनका जो अगला मुकाबला कल होने वाला है, यानी कल उनकी असली परीक्षा होनी है.
0: जी, और चलने से पहले आपको एक खुशखबरी की नोट पे ही छोड़ेंगे, बिकॉज आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबरों के साथ हुई थी. शूटिंग की दुनिया से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल्स के बारे में पता चला, बिकॉज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट कमलजीत एंड सुरजीत सिंह ब्रॉट अस द लॉरेल्स बाय गेटिंग इंडिया द कवेटेड गोल्ड. और इंडियन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस में हमारे भारतीय शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था. वहीं अगर हम बात हैं स्क्वॉश में भी, तो स्क्वॉश में मिक्स डबल्स के इवेंट के जो सेमीफाइनल्स कल घटित होने वाले हैं, उसमें हम ये उम्मीदें रख सकते हैं कि हमें एक मेडल तो डेफिनेटली, अब यानी भारत को मेडल डेफिनेटली अश्योर हो चुका है. इसके साथ ही मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को अभी के लिए दीजिए इजाजत. हम आपसे एक बार दोपहर 3:30 बजे दोबारा जोड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. फॉर नाउ इट्स गुड बाय एंड टेक केयर.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेनबो 101.9 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी। और रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। यहां पर अभी समय हो रहा है 1:36, 1, 2, 3 और अभी हो रहा है 1:37। तो हमें व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आए हैं और हम चलते हैं मैसेजेस सेगमेंट की तरफ। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हुदा बाबा नगर से। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम हुदा जी। वालेकुम अस्सलाम। हाय जीडी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। आप सबको जुम्मा मुबारक। तो बहुत शुक्रिया, और आपको भी जुम्मा मुबारक। फेस्टिवल स्वीट में हमारा फेवरेट शीर कुरमा है। आपका फेवरेट स्वीट क्या है? जी हाँ हुदा जी, मैं तो जानता हूँ शीर खुरमा जो रमज़ान का स्पेशल होता है, ऑब्वियसली बहुत ही हमारे यहाँ पर इसको पायसम बोलते हैं। तो जी हाँ, और रही बात मेरा फेवरेट स्वीट, मेरे हाथ की उंगलियाँ कम पड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी गणेश का महोत्सव चल रहा है और मैं पिछले 10 दिन से सिर्फ स्वीट्स और प्रसाद ही खा रहा हूँ। और उसमें डेफिनेटली मेरा भी फेवरेट है मोदक। जी हाँ, तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमको मैसेज आया है दीपू जी फ्रॉम मेहंदीपट्टनम। ये अपना गणपति पप्पा का फोटो भेजते हैं। और एक और मैसेज है किरण जी, और ये भेजते हैं टैंकबंड से, और इनका गणपति पप्पा का विसर्जन हो गया है। ये लास्ट वाला वीडियो भेजा है जहाँ पर गणपति पप्पा पानी में जा रहे हैं। और एक और वीडियो आया है जो कि भेजा है सर मैडम, आप अपना प्लीज़ नाम बोलेंगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो भेजा है जहाँ पर पर्दा खुलते ही एक गणपति बप्पा का बहुत खूबसूरत सा फोटो। और यहाँ पर हमें मैसेज किए हैं मल्लिकार्जुन जी, और ये फोटो भेजते हैं गणपति बप्पा का और कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया। जी हाँ, और ये फोटो में, वाह भाई वाह, फोटो में यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 56 भोग का पिक्चर है जो वो अपनी सोसाइटी में किया है गणपति बप्पा का। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, मुझे मुझे तो एकदम लाइक 50 50 तरह के स्वीट्स एंड यहाँ पर नमकीन भी रखा हुआ है। तो जी हाँ, इतना इतने सारे भोग रखे हुए हैं, वाह बहुत ही खूबसूरत। और हमें यहाँ पर मैसेजेस और भी आए हैं, और यहाँ पर हमसे जुड़े हैं प्रिया जी, और ये मैसेज करते हैं। इनका मैसेज मैं अभी एक गाने के बाद पढ़ूंगा, कहीं जाइएगा मत। और हाँ, आप अगर हमें मैसेज करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 4023234822। जी मैं एक और बार दोहरा देता हूँ, 4023234822। आप हमें इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और मैं आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगा।

वेलकम बैक दोस्तों, ये था गाना महागणपतिम। गणपति बप्पा का कोई भी इवेंट हो और ये गाना ना बजे, ये हो ही नहीं सकता। जी हाँ, और ये था गाना फ्रॉम राजलक्ष्मी संजय, बहुत ही सुरीली आवाज़ में और बहुत ही भक्तिपूर्ण गाया इन्होंने महागणपतिम। तो जी हाँ दोस्तों, हम जाने से ये सेगमेंट आने से पहले हम बात कर रहे हैं मैसेजेस के बारे में, और यहाँ पर कई लोगों ने मैसेजेस किया है और मैं कोशिश करूँगा सारे लोगों की मैसेजेस मैं रख सकूँ। तो यहाँ पर अभी मैसेज किया है प्रिया जी ने, और वो कहते हैं कि माय फेवरेट मिठाई इज़ ढेर सारा मिठाई। जी हाँ, बहुत अच्छे। और ये लिखते हैं एम प्रिया, नूर का है आया त्योहार, बप्पा करेंगे सबके दुख पार। जी हाँ बिल्कुल। और ये लिखते हैं मुझे टाइगर राइस पसंद है। टाइगर राइस, वही पुलिहोरा। अच्छा, पुलिहोरा, ओके वाह। टाइगर राइस, हमारे घर के बच्चे टाइगर राइस बोलते हैं इसे प्यार से, बहुत ही मस्त है यार, बहुत ही फनी। बिकॉज हाँ, टाइगर राइस यानी कि पुलिहोरा, यानी कि पुली तेलुगु में पुली मतलब टाइगर होता है जी। और लिखते हैं गणपति आए आंगन तुम्हारे, खुशियां बरसे जीवन तुम्हारे, हो जाए पूरे सपने सारे, जय हो गणेश जी प्यारे। जी हाँ, जय हो जय हो। और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर हमारे प्यारे अश्विन जी कोटी कुशल मार्केट से, और ये लिखते हैं जय श्री कृष्णा। और इन्होंने बहुत ही अच्छा सा मैसेज लिखा है, और ये कहते हैं आज विसर्जन का मौका तो है, तो इन्होंने विसर्जन के ऊपर ही कुछ बात बताई है। कहते हैं विसर्जन सिखाता है, जो आए हैं जो आया है उसे जाना ही होगा, जो आया है उसे जाना ही है।

0: मोह छोड़ो, कर्म ऐसा करो कि जाने के बाद भी यादें अमर रहे। जी हाँ, बहुत ही करेक्ट कहा है आपने कि जो भी आता है उसे जाना तो होगा ही। जैसे कि अभी गणपति बप्पा का विसर्जन होने वाला है, लेकिन हमें काम ऐसा करना है जो याद रह जाए, जो अच्छा रह जाए। जी हाँ दोस्तों, और एक और भी लिखते हैं, सरल बनिए स्मार्ट नहीं, सरल बनिए स्मार्ट नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है किसी कंपनी ने नहीं। राधे राधे। अरे वाह, बहुत ही अच्छा कहा है आपने, सरल बनिए स्मार्ट नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है कंपनी ने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कुशल मार्केट से ये थे अश्विन जी। और इन्होंने यहाँ पर एक मैसेज भी मेंशन किया है, हमारा पसंदीदा स्वीट है मैसूर पाक, देसी घी का। अरे वाह। और हमें एक और मैसेज भी आया है यहाँ पर, और ये है, हेलो जेडी जी, मेरा नाम गुनगुन है, आपका नाम बिल्कुल आपके आवाज़ की तरह बहुत ही सुंदर है, और ये बात मुझे शेयर करनी है कि विसर्जन का दुख ज़रूर है, क्योंकि यही दुख अगले साल के आगमन की उम्मीद बन जाता है। बहुत ही बढ़िया कहा है आपने, और जाना ही आने का वादा है। जी हाँ जरूर, इसी इंतजार में तो सारा प्यार है, इसी इंतजार में तो सारा प्यार है, गणपति बप्पा मोरिया। जी बहुत ही सही कहा है आपने, जाना ही आना आने का वादा है, इसी इंतजार में सारा प्यार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं हमको। और ये एक और मैसेज आया है फ्रॉम विजय फ्रॉम लंगर हाउस, और ये अपने गणपति बप्पा के, अपने घर के छोटे गणपति बप्पा के तस्वीर भेजते हैं जहाँ पर पूजा चल रहा है। और हमें यहाँ पर मैसेज आया है एक और, यहाँ इनका नाम है, हेलो जय डी जी, मैं हूँ आपका फ्रेंड, मेरा फ्रेंड सर, आप देखिए सारे लिजनर्स तो हमारे दोस्त हैं, अगर आप नाम मेंशन करते तो मैं ज़रूर मैं मेंशन करूँगा, और मुझे भी पता चले कि कौन है ये फ्रेंड। और ये फोटो डालते हैं एक गणपति बप्पा की, जो कि है शिवाजी महाराज के अवतार में। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत थैंक यू सर, अगर आप नाम मेंशन करेंगे तो मैं ज़रूर पहचान जाऊँगा, वैसे तो सारे ही हमारे दोस्त हैं। और चलिए दोस्तों, अभी हम हमारे जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, और मैं जल्दी जल्दी से कुछ और स्टेट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें अभी बहुत जल्द टाटा बाय बाय करने का टाइम हो रहा है, जिसका दुख मुझे भी तो है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और दिलचस्प प्रसाद के बारे में बता के चले जाऊं। केरला के बारे में बताएंगे अभी, और केरला में फेस्टिवल ऑफरिंग्स में बनाना यानी कि केला बेस्ड प्रिपरेशन और ट्रेडिशनल स्वीट्स का अपना प्लेस है। जी हाँ, केरला में जो है बनाना से बने हुए जो स्वीट्स है उसका प्रमुखता बहुत है, और यहाँ पर पायसम तो पॉपुलर है ही, इसके अलावा बनाना, कोकोनट, जैगरी और घी, इनसे बनने वाला ट्रेडिशनल प्रिपरेशन भी साउथ इंडियन फेस्टिवल फूड कल्चर का पार्ट है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में प्रसाद सिर्फ स्वीट नहीं होता, कहीं स्टीम डंपलिंग है, कहीं राइस प्रिपरेशन है, कहीं लड्डू, कहीं कोकोनट बेस्ड स्वीट्स, कहीं दाल बेस्ड प्रिपरेशन। जी हाँ, यानी प्रसाद भी अपने रीजन की फूड कल्चर की स्टोरी सुनाता है। तो दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे म्यूजिकल जर्नी की तरफ, उससे पहले सुनिए एक संदेश।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాప్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मोदक, तमिलनाडु का कोजू कटाई, कर्नाटका का कडुबू, बंगाल का नरकेल नारू और संदेश, और गुजरात की सुखदी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का उंड्रालू और साउथ इंडिया का पायसम। नाम अलग, इंग्रेडिएंट अलग, टेस्ट अलग, लेकिन इमोशन एक ही, बप्पा के लिए प्रेम और श्रद्धा। और मुझे लगता है प्रसाद की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि प्रसाद की प्लेट में क्वालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंटेंशन की होती है। जी हाँ, आप घर में 21 मोदक बनाएं या सिर्फ थोड़ा सा गुड़ और कोकोनट बप्पा को अर्पण किए, भावना सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और हाँ, आज घर घर में प्रसाद बना रहा है, हर घर में, पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बन रहा है, तो एक रूल याद रखिएगा, और वो है बप्पा को पहले, आरजे जेडी को बाद में। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था, तो पहले बप्पा को फिर हमें, क्योंकि प्रसाद का असली मजा तभी आता है जब पहले बप्पा का नाम और उसके बाद सबका साथ शेयरिंग। जी हाँ, गणपति बप्पा मोरिया। और अब प्रसाद की बातों के बाद थोड़ा सा म्यूजिकल जर्नी हम चलते हैं, हम एक आखिरी सॉन्ग बजाते हैं आज के सेगमेंट का। लेकिन उससे पहले, हम लोगों ने आज ढेर सारी बातें की, देखते देखते गणेश विसर्जन स्पेशल का ये 4 घंटे भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। सुबह बप्पा के स्वागत से शुरू हुआ ये सफर हैदराबाद के अलग अलग पंडाल से गुजरे, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, साउथ इंडिया और देश के अलग अलग हिस्सों की गणपति ट्रेडिशन का जानना, प्रसाद की मिठास छकी हम लोगों ने, और बप्पा की कहानियां सुनी, और आज का ग्रैंड विसर्जन की तैयारी और उसकी कहानी भी आप तक पहुंचाई है। और हमने जाना कि विसर्जन लाइव अपडेट्स खैरताबाद का, जो कि अभी भी वहीं पर है, और एनी मोमेंट कभी भी ये रेडी हो सकता है विसर्जन के लिए, क्योंकि क्रेन्स हिल रही है और ये अभी भी मैनेजमेंट चल रहा है। और अपने अपने टीवी चैनल्स में न्यूज़ ऑन कीजिएगा ताकि आप लाइव अपडेट्स देख सकें। और रही बात, वो सब अपने साथ लेकर चले जाते हैं, यानी दुख को। मूर्ति का विसर्जन तो होता है लेकिन आस्था का नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए बप्पा की यात्रा आज पूरी हो रही है, लेकिन उनकी आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ। और हैदराबाद आज जब अब बप्पा को विदा करने निकले, तो एक बात याद रखिएगा, आस्था भी हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी। पुलिस और वॉलंटियर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए और विसर्जन को सेफ और पीसफुल बनाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदाई, और मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, मेरा आरजे के शो में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: టీట్కా.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल. मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आज के शाम 4:30 बजे आपके लिए दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की आपको हम दे सकते हैं वो एथलेटिक्स की दुनिया से, बिकॉज एथलेटिक्स के इवेंट्स शुरू हो गए हैं. और उसके अंदर द बेस्ट न्यूज दैट हैज कम इन फॉर अस राइट नाउ इज दैट मनप्रीत कौर हैज गॉन ऑन टू विन ब्रॉन्ज इन एथलेटिक्स इन द शॉर्ट पुट इवेंट. In the women's shot put event, जी हाँ, she has won bronze for India with the best throw of 17.17. आपको बता दें कि मनप्रीत कौर का जो पहला अटेम्प्ट था वो 16.32 का था, सेकंड अटेम्प्ट 16.41, थर्ड अटेम्प्ट 16.80, चौथा अटेम्प्ट 17.17, पांचवा अटेम्प्ट 16.75 और छठा अटेम्प्ट था इनवैलिड. छठे अटेम्प्ट के बाद वो काफी निराश भी दिखी थी, बिकॉज उनको लगा था कि शायद वो अपना छठा अटेम्प्ट सबसे बेहतर कर पाएंगी, लेकिन क्योंकि वो इनवैलिड हो गया तो शी हैड टू सफाइस विद 17.17, which thereby has given India its bronze medal, and with this the total number of medal tally also of India has gone up to 21. China ne liya gold isme aur silver दोनों ही. वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर जो है वो 100 मीटर्स के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं. गुरिंदर वीर सिंह ने 10.32 सेकंड्स का टाइमिंग क्लॉक किया और अनिमेश कुजूर ने 10.38 का टाइमिंग क्लॉक किया. और इसके बाद क्योंकि वो अब सेमीफाइनल की रेस से ही बाहर हो चुके हैं, निराशाजनक खबर, भारत का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है शायद 100 मीटर्स के आगे इस रेस के अंदर, अब फाइनल्स के अंदर.
2: जी बिल्कुल. अब बताना चाहूंगा बैडमिंटन की खबर है. हालांकि बैडमिंटन की अच्छी खबर है कि भारत के लिए, भारत के नजरिए से देखा जाए तो बेहद खास खबर है. एशियन गेम्स के बैडमिंटन के महिला युगल में भारत के लिए जो टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है. राउंड ऑफ 32 में भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग के त्यांग ह्यू यान और लुई लोक की जोड़ी से हुआ था. टीसा और गायत्री ने पहला गेम शानदार तरीके से 21-16 से अपने नाम किया. हालांकि दूसरे गेम में हांगकांग की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-16 से गेम जीतकर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया. इसके बाद निर्णायक तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टीसा और गायत्री ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और तीसरा गेम भी 21-16 से जीत लिया. इस तरह भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में जगह पक्की कर ली है. अब

0: राउंड ऑफ 16 में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद के सामने जापान की विश्व नंबर 3 जोड़ी युकी फुकुशिमा और माइसु मासुमो की जोड़ी होगी, यानी अगले दौर में भारतीय जोड़ी के सामने दुनिया की शीर्ष जोड़ियों में से शामिल एक मजबूत प्रतिद्वंदी मिलने वाली है।
1: होपफुली शायद उम्मीद करते हैं कि भारत का सफर यहाँ पे अच्छा बने। लेकिन वुमेन्स डबल्स के फर्स्ट राउंड मैच में सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम वर अप अगेंस्ट फेब्रियाना कुसुमा और मेलियासा पुष्पित तसारी ऑफ इंडोनेशिया, वेयर द इंडियन डुओ लॉस्ट 9-21, 5-21 टू इंडोनेशिया इन स्ट्रेट गेम्स, थेरबाय लूजिंग द मैच 2-0 टू इंडोनेशिया। तो मेरे पास तो बैडमिंटन की दुनिया से आपको कुछ अच्छी खबरें देने के लिए नहीं थी जैसे शाहिद ने दी, लेकिन आई एम श्योर शाहिद हैज मोर अपडेट्स टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स।
0: जी बिल्कुल, तैराकी की बात कर लेते हैं। ऋषभ दास ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, हालांकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा काम नहीं आया उनको इस इवेंट में, एशियन गेम्स में, एशियाई खेलों में। भारतीय तैराक जो ऋषभ दास है, उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए, हालांकि शानदार प्रदर्शन जरूर रहा लेकिन पदक जीतने से चूक गए और छठे स्थान पर है, लेकिन उन्होंने 1:58.77 का समय निकालकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो उनका अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, उसे तोड़ दिया। 19 वर्षीय ऋषभ ने अपने पुराने रिकॉर्ड में 1 सेकंड से ज्यादा का सुधार किया। वहीं भारत के उत्कर्ष पाटिल 2:00.94 के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे।
1: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि मिक्स डबल्स के अंदर आज भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। जी हाँ, मनु शाह और दिया चितले लॉस्ट 8-11, 5-11, 8-11, 2-11 टू चाइनाज वैंग चू क्वीन एंड सुन यिंगशा इन द मिक्स डबल्स सेमीफाइनल्स। क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला था, ये कह सकते हैं हाँ कि भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया, लेकिन चाइना के दोनों ही अपोनेंट्स भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से आज हावी हो गए थे। कंप्लीट डोमिनेशन उनका देखने को मिला भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर, प्रिटी मच गोइंग बाय द वे द चाइनीज फंक्शन एंड प्ले द गेम ऑफ टेबल टेनिस, एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन डुओ लॉस्ट द एंटायर गेम in four entire match in four straight games, making the lead to be 4-0 and thereby settled in with the bronze medal. So congratulations to the Indian mixed doubles team who got us the bronze today in India.
0: जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई थी, लगातार मेडल मिल रहे थे, शाम ढलते ढलते उस मेडल में एक और मेडल जुड़ गया है। उम्मीद करेंगे अभी जो समय और बचा वहां भी कुछ अच्छी खबर आए। फिलहाल एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट में फिलहाल इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी ठीक घंटे बाद। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरी साथी साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: వెల్ ఫ్రెండ్స్, శీతాకాలంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనాలి ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ హిల్ స్టేషన్ అండి. అంతకు మించిన ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ ఉండదు. మంచుకొండల అందాలు, గలగలా పారే బియాస్ నది, చూడముచ్చటైన లొకేషన్లు టూరిస్టులని విస్మయానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి మనాలికి మనం వెళ్తే ఏం చేయొచ్చు, ఏం చూడొచ్చు, మాట్లాడుకుందాం. స్టే విత్ మీ.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: And a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ साक्षी मांडवाल। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले खुशखबरी आपको बता देते हैं एथलेटिक्स की दुनिया से, जहाँ वुमेन्स शॉटपुट में मनप्रीत कौर हैज बॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। जी हाँ, विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स मनप्रीत कौर ने भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। इसके साथ ही भारत अब मेडल टेबल में कुल मिलाकर 21 मेडल्स कमा चुका है। चाइना ने दोनों ही गोल्ड और सिल्वर अपने नाम कमा लिए इन द वुमेन्स शॉर्ट पुट। आगे बढ़ेंगे मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल पे। गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, दे विल नो मोर बी टेकिंग पार्ट इन द फाइनल्स टुडे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे कुडंट इवन क्वालिफाई और फिनिश ऑफ इन अ नाइस मैनर फ्रॉम द सेमीफाइनल। आपको एक और मेडल अलर्ट यहाँ पर दे देते हैं। गुलवीर सिंह ने सिल्वर बैक कर लिया एथलेटिक्स के मेन 10,000 मीटर के अंदर। अनदर medal coming for India, and this time it is the silver medal that Gulveer Singh has bought for the Indians. And 800 meter finals in heptathlon, mein aapko bata de, Pooja finished in the event in women's heptathlon with a timing of 2 minutes 16.43 seconds, while compatriot Anamika clocked in 2 minutes 18.06 seconds to finish third in the events. Lekin unke efforts kafi nahi the, Pooja isi wajah se 6th spot par finish kiya unhone heptathlon ke andar, wahi Anamika ne 8th sthan par khatam kiya. और लास्ट में चलते चलते एथलेटिक्स के अंदर आपको बता देते हैं कि भारत की सिंधु श्री गणेशा इज आउट ऑफ द वुमेन्स पोल वर्ल्ड फाइनल विदाउट अ वैलिड मार्क। शी फेल्ड टू क्लियर 3.85 मीटर्स इन 2 अटेम्प्ट्स बिफोर आल्सो मिसिंग आउट एट 4 मीटर्स। शाहिद
2: जी, बिल्कुल, अभी आपने गुलवीर सिंह का जिस तरह जिक्र किया, उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 10,000 मीटर की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है। मेडल की बात चल रही तो आज जो जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी, भारत ने गोल्ड जीता था, उसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दूं जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं एशियन गेम्स में। भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, एशियन गेम 2026 में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले क्रिकेट में महिलाओं ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। अगर आज के शूटिंग के मुकाबले की बात करें तो अंतिम स्कोर जो रहा था 484.6 रहा था, जो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक था। इससे अंदाजा लग सकता कितना बेहतरीन भारत ने प्रदर्शन किया था। वहीं एक और खबर देते बॉक्सिंग के रिंग से, जहां सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए

0: क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुनसुके किटामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। लेकिन प्रीति पवार से उम्मीद थी वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में वो राउंड ऑफ 16 में ही उनका सफर खत्म हो गया। 0-5 से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।
1: जी, और हॉकी की अगर बात करें तो खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज जापान को 3-1 से हरा दिया। लाल रेमसियामी ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडिया लीड विद नवनीत कौर एडिंग टू द थर्ड गोल। और इसके साथ ही अब आपको ये बता दें कि भारत सेमी फाइनल्स में तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी उनका आखिरी मैच पूल मैच बचा हुआ है सिंगापुर के साथ, एंड उसके बाद भारत का सामना या भारतीय महिलाओं को दोस्तों हम देख सकेंगे सेमीफाइनल हॉकी मैच के अंदर।
0: जी बिल्कुल देख सकेंगे, और जिस तरह से आज का दिन रहा, कई भारत के मेडल्स आए हैं, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो अभी भी जो मेडल आया है गुलवीर सिंह का, उसने शाम को सुहानी बना दिया है।
1: ऑफ कोर्स शाम को तो सुहानी बना ही दिया है, क्योंकि हम मेडल्स की आज बात ही कर रहे थे। तो आपको ये भी बता दें कि स्क्वाश की दुनिया से भी आज हमें काफी सारी खुशखबरी मिली थी, बिकॉज जोशना चिनप्पा ने तो हमें एक मेडल का एक तरीके से कहते हैं ना भारत को आश्वासन या रिश्योरेंस दे दिया है, क्योंकि अब जोशना चिनप्पा और उनके साथ साथ जो उनके पार्टनर वहां पर होंगे इस गेम में, विच इज वी सेंथिल कुमार, वो आज हमने देखा कि कैसे मिक्स डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स में स्ट्रेट गेम विन करके 11-3 11-5 से अपने फिलिपिनो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आगे बढ़ गए। और अब यहां से कम एक ब्रॉन्ज तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही यहां पर हम अगर आपको बताएं शाहिद, एक बहुत जरूरी चीज जो थी वो यही थी कि हम देखने वाले हैं यहां पर वीर चौटरानी, जो कि हार गए थे आज मोहम्मद इरफान से पाकिस्तान के इन द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स 1-3। अब मोहम्मद इरफान का सामना होगा अभय सिंह से इन द सेमीफाइनल ऑफ मेंस सिंगल्स। यस, क्योंकि अभय सिंह ने आज जापान के सुकुई को 3-0 से हरा कर सेमीफाइनल में मेंस सिंगल्स के प्रवेश किया, और उनका सामना अब होगा मोहम्मद इरफान से।
0: जी बिल्कुल, और क्या घटित होता अगले एक घंटे में हम इसकी जानकारी ठीक 6:30 पर देंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी साक्षी मांडवाल को इस घंटे के अपडेट के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: వెల్కమ్ బ్యాక్. తాజా ట్యూన్స్ వింటున్నారు. ఇప్పుడు మనం కాస్త వెనక్కి వెళ్ళి అత్తారింటికి దారేది సినిమా నుంచి బాపు గారి బొమ్మ సాంగ్, అలాగే బొమ్మరిల్లు నుంచి కన్నులు తెరిచి కలగంటామని సాంగ్ విందాం. స్టే విత్ మీ.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। एथलेटिक्स में भारत के लिए बड़ी खबर आई है। वारानिका एलंगुवन ने एशियन गेम्स 2026 की महिला पोल वॉल्ट में, जो पोल वॉल्ट की स्पर्धा होती है, उसमें कांस्य पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास गढ़ दिया है। वारानिका ने 4.15 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार की। कजाकिस्तान की पोलिना इवानोवा ने भी 4.15 मीटर की ऊंचाई पार की। दोनों खिलाड़ी 4.25 मीटर की ऊंचाई पर सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद कांस्य पदक साझा किया गया। इस उपलब्धि के साथ वारानिका एलंगुवन एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत के लिए ऐसे यह एथलेटिक्स में एक ऐसी उपलब्धि है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
2: जी शायद, थैंक यू सो मच। और इसी अपडेट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे एथलेटिक्स में, क्योंकि आज मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि वुमेन्स 400 मीटर फाइनल में भारत की प्राची भी क्वालिफाई कर चुकी है वुमेन्स 400 मीटर फाइनल्स के लिए, आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन अ हीट इन 53.46 सेकंड्स। शी एडवांसेस एज वन ऑफ द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट रनर्स आउटसाइड द टॉप टू फिनिशर्स इन द थ्री हीट्स। ईरान ज़हरा विंस द थर्ड हीट इन 52 सेकंड्स। अर्लियर इंडियाज़ किरण हैड फिनिश्ड सेकंड इन अ हीट इन 53.44 सेकंड्स टू क्वालिफाई डायरेक्टली। ये भी आपको बता दें कि द टॉप टू फिनिशर्स फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री हीट्स क्वालिफाइज डायरेक्टली फॉर द फाइनल विद द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट एथलीट्स अक्रॉस ऑल थ्री हीट्स आल्सो एडवांसिंग। वही मेंस 400 मीटर फाइनल में विशाल टीके का एक बहुत स्टुपेंडस रन रहा उनके हीट में टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, बिकॉज ही फिनिश्ड इन द फर्स्ट स्पॉट इन द हीट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। वेल, द इंडियन वन हिज मेंस 400 मीटर हीट इन 45.27 सेकंड्स टू स्टॉर्म इनटू द फाइनल। विशाल पिप्स कतार अमर इब्राहिम बट जस्ट 0.04 सेकंड्स। इंडिया विल नाउ हैव रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द मेन एंड वुमेन्स 400 मीटर फाइनल। शाहिद
1: जी, ट्रैक एंड फील्ड पर भारतीय खिलाड़ी आज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक पे चलते हैं, एथलेटिक्स की बात करते हैं। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में जो शानदार प्रदर्शन किया है, रजत पदक जीता, उसकी बात कर लेते हैं। एशियन गेम 2026 में भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28:29.38 सेकंड का समय निकाला। वहीं बहरीन के बिरहानू बालवेव ने 28:27.51 का समय निकाला और स्वर्ण पदक अपने खाते में जोड़ा, जबकि अल्बर्ट किप्टू ने 28:34.38 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यह एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने हांगझाऊ 2023 में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था और इस बार उन्होंने अपने पदक का रंग बदला है। गुलवीर सिंह भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। इस साल ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था। खास बात यह कि आईची नागोया एशियन गेम्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों में 10,000 मीटर की स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीता। महिलाओं के 10,000 मीटर में, जैसा हमने पहले बताया था, सीमा कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, यानी महिलाओं में कांस्य पदक मिला। पुरुषों में हमें 10,000 मीटर में रजत पदक हासिल हुआ है।
2: हाँ जी, एंड टू ब्रिंग द बिग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स एंड वुमेन्स शॉट पुट वंस अगेन फॉर ऑल आवर लवली लिसनर्स, मनप्रीत कौर ने भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स। यस, इट वॉज अ मोमेंट फॉर एवरी इंडियन टू फील प्राउड, बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली मेक अस ऑल फील वेरी हैप्पी। चाइना को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वुमेन्स शॉट पुट पे प्राप्त

0: हरप्रीत कौर ने भी भारत को आज ब्रॉन्ज दिलवाया है और कृष्णा जयशंकर मेनन ने फिनिश किया पांचवें स्थान पर विमेन के शॉट पुट अरीना के अंदर शाहिद
1: जी। दो भारत के एक खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनके बारे में बताना चाहूंगा। भारत के गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। गुरविंदर 11वें और अनिमेश कुजूर 18वें स्थान पर रहे। हालांकि दोनों भारत में जिस तरह से प्रैक्टिस करके जिस तरह गए थे, उम्मीदें थी कि काफी बेहतर करेंगे, लेकिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाने से वो चूक गए। आपको बता दें गुरविंदर ने 10.32 का समय लिया जबकि अनिमेश कुजूर ने 10.38 का समय लेकर 100 मीटर की दौड़ पूरी की और इनके इसके साथ ही उनकी जो चुनौती थी 100 मीटर में वो समाप्त हो गई है।
0: जी एंड मूविंग ऑन टू एथलेटिक्स आल्सो वी हैड वेरोनिका एलांगोवन विनिंग अस द ब्रॉन्ज वुमेन्स पोल वॉल्ट फाइनल में। अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टू हैव वन अ मेडल इन पोल वॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। स्क्वाश की बात करें तो जोशना चिनप्पा और वी सेंथिल कुमार बी डेविड पलिनो जेम के अरेबिदो ऑफ फिलीपींस एंड मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल। यहां पर भी भारत के लिए एक मेडल कन्फर्म हो गया। आज का दिन स्क्वाश के नजरिए से तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। कबड्डी में दोनों ही महिला और जो मेन्स हॉकी की टीमें हैं भारत की, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स को, यानी भारतीय महिलाओं ने नेपाल को आज हराया कबड्डी के सेमीफाइनल में और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं कबड्डी की तरफ मेन में भारत ने थाईलैंड को हराया और उसके फाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ओवरऑल इफ यू वुड टू सम अप इंडियाज डे टुडे इन टर्म्स ऑफ द मेडल काउंट, इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट एंड थैंकफुली इट्स आल्सो एंडिंग ऑन अ डिसेंट एंड अ गुड नोट शाहिद टुडे।
1: जी बिल्कुल, मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं। एथलेटिक्स में भारत के लिए एक बड़ी खबर यह भी रही, बरानिका एंगलगोवन ने एशियन गेम 2026 की महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता है, जो इतिहास रचा है, वो एक संदेश देता है कि जो भारत के एथलेटिक्स से खासकर अगर हम बात करें ट्रैक और फील्ड की, दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
0: जी और थोड़ी सी अपसेटिंग न्यूज बता दें कि आज के दिन का सबसे बड़ा अपसेट बैडमिंटन की दुनिया से आता है, जहां पर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी लॉस्ट टू पकापोन एंड पीरता चाई सुखपोन 1-2 ऑफ थाईलैंड इन द मेंस डबल्स फर्स्ट राउंड। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दे वर दी मेडल कंटेंडर्स एंड वी वर कीपिंग अ होप।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर। इस स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: में और हत्ता डॉक्टरों में ये गलत फहमी है कि सारे फिट्स और एपिलेप्सी का एक ही इलाज,
1: जब कैसा नहीं है
0: नहीं है ऐसा।
1: जी।
0: उसकी तशखीस देनी पड़ती है कि कौन सा किस्म है, फिर उसके बाद इलाज उसको

0: अच्छा हाँ
1: डॉक्टर से, वो पैसों के लिए।
0: हाँ
1: जो भी हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तब उन्हें पहले एमआरआई सीटी करो, उसकी कोई जरूरत नहीं होती,
0: अच्छा, ओके ओके,
1: एक सी ईसीजी बस काफी है।
0: काफी है।
1: जी
0: अच्छा
1: हाँ,
0: डॉक्टर साहब, बाज औकात मिर्गी का जो दौरा आने से पहले मरीज को कोई ऐसा इशारा मिलता है क्या, जैसे कि अजीब सी बू
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: जायका?
1: कुछ कुछ लोगों को मिलता है, सबको नहीं। कुछ
0: अच्छा।
1: लोगों को सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को जो है चक्कर आती है, कुछ लोगों को आप जैसा फरमाए अभी बू, कुछ अजीब गरीब बू आती है, कुछ लोगों को पेट में से मुंह तक एक किस्म का ऐसे लगता है जैसे कुछ, उसको बता नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाह रहा था,
1: जी
0: अगर हमारे सामने किसी शख्स को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो 30 सेकंड में हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पे?
1: उसको पलटा देना चाहिए, एक तरफ करवट देनी चाहिए,
0: ओके ओके
1: और उसको हाथ पैर उसके ना पकड़ें, उसके हाथ में कुछ ना दें, मुंह में कुछ ना डालें। ये
0: अच्छा
1: गलत फहमी है कि मुंह में डालना है तो जबर निकट रह जाएगी, मगर वो छूट के अगर गिर जाएगा तो खतरनाक हो जाता। और
0: अच्छा
1: हाथ पैर पकड़ेंगे तो बाद में हाथ पैर में बहुत दर्द होगा।
0: अच्छा गलतफहमी से डॉक्टर साहब याद आया कि मिर्गी के ताल्लुक से लोगों में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां और अंधविश्वास है, जिसे हम तवहम परस्ती भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, साइंसी एतबार से इस सोच को आप कैसे देखते हैं?
1: बिल्कुल गलत है, एकदम है। इंडिया एक और अफ्रीका दो ऐसे मुल्क हैं जहां पे ये इसका अंधविश्वास बोलने चाहिए बहुत ज्यादा है। यानी मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिसको जो है 1 महीना कब्रिस्तान में सोए हैं।
0: अरे
1: हाँ, वो सुबह सुबह फजर से पहले घुटनों के बल पे जाके किसी मौलाना से मिले तो वो मौलाना कान में बालियां दिए। कुछ लोग ऐसे गए हैं जो मुर्गी को काटे और उसका खून मरीज पे डाल दे।
0: ये तो बड़ी गलत फहमी है डॉक्टर
1: हाँ,
0: साहब।
1: और जो है कुछ लोग जो है गांव में वो नीम की झाड़ की से मारते हैं उसको,
0: पत्तों से
1: बेचारे को
0: जी,
1: बहुत देर तक मारते हैं ये समझ के उसको ये शैतान पकड़ लिया है।
0: अच्छा।
1: तो ये इस किस्म के बहुत, और हमारे पास भी ये है कि इधर ले गए उधर ले गए, उसको पढ़ाए फूकाए। खैर, हमारे को हमको कुरान पढ़ने से तो कोई ये ही नहीं है, बिल्कुल ही वो तो
0: जी
1: ये
0: बिना
1: है,
0: शुबा।
1: मगर लोग
0: हाँ
1: उसका नाजायज फायदा उठाते हैं।
0: जी, बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल
1: सब अंधविश्वास है बहुत यहाँ
0: जी।
1: पर।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जो मिर्गी के मरीज हैं उनको जिंदगी में किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, समाज में उन्हें किस नजर से देखा जाता है, तालीम से लेकर मुलाजमत तक उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये भी जरा तफसील से
1: बहुत
0: बताएं।
1: अच्छा सवाल आपने किया, यही असल मसला है। देखिए, जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको पहले देखेंगे कि उसका इंटेलिजेंस ठीक है या नहीं।
0: अच्छा
1: अगर इंटेलिजेंस ठीक है या बॉर्डर बॉर्डर लाइन है तो नहीं लेंगे, उसको बोलेंगे आप स्पेशल स्कूल जाओ।
0: स्पेशल स्कूल। अच्छा
1: अच्छा, बच्चे का आईक्यू भी ठीक है, उसको अगर ले लिए तो फिर एक आध फिट अगर स्कूल में आ जाए तो टीचर प्रिंसिपल सब घबरा के उसको निकाल देते हैं।
0: हाँ,
1: ऐसे ही जो है कॉलेज में होता है,
0: तो ये वालदेन के लिए बड़ी परेशानी की
1: बड़ी
0: बात है।
1: परेशानी है, और फिर कॉलेज में भी ऐसे होगा तो निकाल देंगे। तो होता ही है कि वो बच्चा एहसास से कमतरी में चला जाता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो ये
0: बिल्कुल
1: समझता कि मैं काबिल नहीं हूं पढ़ने
0: जी
1: लिखने
0: जी
1: के,
0: जी जी
1: और फिर उसके बाद उसको जो है वो एहसास से कमतरी में जो है वो बड़ा होता है। तो जब वो डिग्री नहीं होती, कोई खास पढ़े ही नहीं, तो अगर भी कोई किस्म का काम सीखता है या जाता है काम करने के लिए तो वहां भी उसको बड़े इससे देखते हैं, नहीं तुम नहीं कर सकते जाओ, तो उसको भी निकाल
0: और
1: दिया
0: सामाजिक
1: जाता
0: तौर
1: है।
0: पे डॉक्टर साहब जो है
1: समझ,
0: फंक्शन में जाना वो
1: हाँ,
0: सब।
1: ये खुद अपने एहसास से कमतरी से कोई फंक्शन या ऐसे शादी ब्याह में
0: जी जी
1: या
0: जी
1: घर में जब लोग मिलते हैं तो ये लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके सामने अगर फिट आ जाए
0: जी
1: तो वो समझते हैं कि ये हमारी बेइज्जती है।
0: ओके ओके तो
1: और इससे बड़ा मसला, सबसे बड़ा
0: जी
1: मसला
0: जी
1: जो है वो शादी का,
0: अच्छा, वो कैसे डॉक्टर साहब?
1: यो इसलिए कि ये अगर किसी को देख लिया था कभी किसी ने बचपने में या कॉलेज में स्कूल में कोई लड़की को फिट आते हुए, तो जब उस पयाम के लिए कोई लोग आते हैं तो लोग भटका देते हैं,
0: अरे
1: ये बच्ची को फिट्स था हम देखे हैं, वो भाग जाते।
0: वो एक ऐप बन जाता, समझिए
1: बिल्कुल, स्टिग्मा बहुत बड़ा है इसमें।
0: स्टिग्मा है। जी
1: हाँ,
0: जी
1: हमारे
0: जी जी
1: पूरे सोसाइटी में इसको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, बहुत गिरी हुई नजर से देखते हैं, ये बहुत गलत बात है। और फिर उसको जब शादी की

0: भी बात आती, अगर कोई बोले तो वो भाग जाते हैं, और अगर हो भी गई शादी तो एकाध बार शौहर के या सास के सामने फिट आता है तो फिर उसको तलाक दे देते
1: डॉक्टर साहब, खवातीन के ताल्लुक से आप बात कर रहे थे, उसी से जुड़ा एक और सवाल है। खवातीन में हार्मोन्स और माहवारी का मिर्गी के दौरों से कोई ताल्लुक होता है? क्या
0: बिल्कुल
1: कुछ खवातीन में मखसूस दिनों में दौरे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर साहब?
0: नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। कुछ तकरीबन से देखिए 60% लड़कियां हो या औरतें हैं
1: जी
0: तो उनको पीरियड से माहवारी से 3 दिन पहले फिट्स शुरू हो सकते हैं,
1: अच्छा
0: और जब माहवारी है तब भी आ सकते, माहवारी खत्म होने के 3 दिन तक भी आ सकते, ये हार्मोन से ताल्लुक है।
1: अच्छा। और अगर मिर्गी की दवा लेने वाली खातून अगर हमल की मंसूबाबंदी करे, उनको मां बनना है, तो उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: उसमें दवाएं से ही लेते रहना पड़ता है, छोड़ना
1: जी
0: नहीं दवाएं, और आराम करना, नींद अच्छी होना 8 घंटे की, और इनको जो है अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेन स्ट्रेस काम करते हुए नहीं करना।
1: अब वो फिर डॉक्टर साहब डिलीवरी का भी जो मरहला आता है उसमें भी चीजें थोड़ी मुश्किल हो
0: हाँ
1: जाती हैं क्या?
0: हाँ तो वो भी क्या है, उसके बारे में हम उनको एडवाइस देते हैं कि
1: जी
0: उनका जो एनेस्थेटिस्ट है, सीजरियन करना चाह रही
1: जी
0: हैं
1: जी
0: लेडी डॉक्टर, तो वो हमसे मशवरा करे कि किस वक्त करें और क्या किस्म का एनेस्थीसिया दिया जाए, तो
1: अच्छा
0: ये मशवरा भी हम देते हैं उनको। और मरीजों को हम बोलते हैं आप वहां जब पहुंचेंगे डिलीवरी से पहले तो हमसे बात उनसे करवाइए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा इसी ताल्लुक से डॉक्टर साहब, ड्राइविंग के बारे में भी क्या एहतियात जरूरी है इस बारे
0: बिल्कुल,
1: में?
0: 5 चीजों का सख्त पर ये है।
1: जो मान लो किसी को अगर मिर्गी का दौरा आए और वो ड्राइव
0: बिल्कुल
1: भी करना
0: बिल्कुल
1: चाह रहा हो तो वो
0: बिल्कुल
1: कैसा करे?
0: जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने, ये भी ड्राइविंग नहीं कर सकते,
1: अच्छा
0: फिर
1: ओके
0: स्विमिंग तैरना नहीं कर
1: हाँ
0: सकते,
1: हाँ ओके
0: और टॉयलेट में जब जाते हैं तो
1: जी
0: अंदर से खटका नहीं लगाना चाहिए, अंदर अगर फिट्स आए तो दरवाजा तोड़ के निकलना पड़ेगा, बाज दफे देर हो जाती है। और जो है ये ऊंचाई पे ठहर के कोई काम नहीं करना, जैसे ऊंचे सीढ़ी पे है या कोई स्टूल पे या जायंट व्हील राइडर्स में बैठ रहे हैं और फिट आया तो गिर जाएंगे, हेड इंजरी हो जाएगी,
1: अच्छा।
0: तो ये चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मगर ये परमानेंट नहीं है, अगर 2 साल इनको फिट्स नहीं आए और दवा ले रहे हैं छोटा भी तो फिर ये चीजें अलाउ हो सकती।
1: ओके ओके आमतौर पर लोग डॉक्टर साहब मिर्गी को बहुत हल्के में लेते हैं, लिप्स अरे ऐसी अभी अभी तो आए थे लेकिन अभी सही हो गया, इस पे लोगों
0: बिल्कुल
1: की
0: बिल्कुल, ये
1: जी
0: समझते हैं कि 2 मिनट में उठ के ठहर जाएगा, है
1: जी
0: फिट्स है, अरे छोड़ दो क्या होगा अभी ठीक हो जाएगा,
1: जी जी
0: और उसका इलाज नहीं कराते। मगर इनको नहीं पता
1: जी
0: कि ये फिट दिमाग में जलजला है,
1: दिमाग में
0: हर बार,
1: जलजला
0: हाँ बिल्कुल, हर
1: जी
0: बार जब आएगा
1: जी
0: कुछ सेल्स जिसको हम इंग्लिश में न्यूरॉन्स बोलते हैं उसको खराब करके जाएगा, और वो न्यूरॉन्स खराब होने से बच्चे की सलाहियतों में फर्क आना शुरू,
1: अच्छा
0: वो जो है याददाश्त उसकी कमजोर हो जाएगी, पढ़ने लिखने में होशियारी कमजोर हो जाएगी, और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला और डिप्रेशन में चला जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, ये मिर्गी के मरीज हर उम्र के हो सकते हैं,
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: ख्वातीन बच्चे मर्द औरत, मतलब उसका कोई वो नहीं है
0: नहीं
1: कि
0: कोई नहीं,
1: अच्छा किसी
0: कोई
1: भी
0: नहीं,
1: उम्र के।
0: किसी को पैदाइश से लेके पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक
1: अच्छा
0: कोई
1: अच्छा
0: ये नहीं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि मिर्गी के बारे में अवाम में पाई जाने वाली सिर्फ एक गलतफहमी खत्म करनी हो तो आप कौन सी वो गलतफहमी खत्म करना चाहेंगे?
0: गलतफहमी ये कि जो है उसको ये समझते हैं कि लाइलाज है,
1: जी
0: मिर्गी लाइलाज है, ऐसा नहीं, अब इतनी अच्छी दवाएं आई हैं
1: जी
0: कि बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर ही उस पर कंट्रोल काबू पाया जा सकता,
1: अच्छा जी
0: तो
1: जी
0: आपकी जो भी हैं उनको, बच्चे हैं या खुद हैं या कोई भी, उसको डॉक्टर के पास लाना और जो है जल्द से जल्द इलाज करना, इलाज करने के बाद जो काम आप नहीं कर सके वो करना, पढ़ना लिखना शादी, और फिर भूल जाना कि मुझे
1: मिर्गी
0: मिर्गी
1: मिर्गी
0: थी कभी।
1: जी तो डॉक्टर साहब, इलाज पे भी कुछ तफसीली रोशनी, जैसे कि कदीम इलाज जदीद इलाज, उस पर भी थोड़ा आप बता दें हमारे सामीन
0: बिल्कुल
1: को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो है कुछ दवाएं ऐसे हैं जो 50 साल पुरानी है, 50 दिन पहले भी नई दवाएं आई हैं,
1: जी
0: 50 साल पुराने दवाएं जो है एप्टॉइन गार्डिनाल टेगरीटाल, ये बाहर के मुल्कों में बंद हो गई है, मगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अभी भी चल रही है,
1: अच्छा
0: इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है,

0: कि ये बहुत कम कीमत की है।
1: अच्छा,
0: जो नए दवाएं हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। दवाएं ही अभी समझिए फिलहाल मेन ट्रीटमेंट का ही ये है। दूसरी सर्जरी हो सकती है, ऑपरेशन, मगर हर केस में नहीं। बास केसों में जैसे ट्यूमर है, खुद्दा है, ब्रेन में कुछ बढ़ रहा है, या फिर एक ही जगह पे ब्रेन में वहां से फिट शुरू होता है, तो वो भी उसका सर्जरी हो सकता।
1: जी
0: और उससे अभी एक नया जो निकला है वो ये है कि
1: जी
0: ब्रेन में ऑपरेशन करके छोटा सा चिप डाल देते हैं
1: चिप
0: उसको।
1: डाल देते हैं। अच्छा,
0: हाँ, वो चिप क्या करता है कि पहचान लेता है कि अभी जो है फिट का एक ये दिमाग में उठ रहा है
1: ओके ओके ओके, हाँ,
0: वेव्स, तो उसको फौरन रोक देता है। वो
1: अच्छा,
0: अभी इंडिया में नहीं आया अभी
1: जी
0: तक,
1: जी
0: तो वो बाहर। तो ये उसके इलाजात है, मगर मेन इलाज अभी भी दुनिया भर में दवा है।
1: अच्छा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो गरीब तबका है और
0: जी
1: वहाँ पर अगर ख़ानदान में कोई ऐसा मरीज़ है जो मतलब के उतना महंगा इलाज नहीं करा सकता, तो उनको इलाज के ताल्लुक से क्या करना चाहिए?
0: देखिए, अब इलाज में दवाएं बहुत सस्ती हो गई
1: अच्छा,
0: है,
1: सस्ती हो गई हैं।
0: बहुत। और हम अगर मरीज के इस्तेतात के हिसाब से
1: जी,
0: उसको दवा लिख सकते,
1: अच्छा,
0: कम
1: ऐसा भी
0: से कम।
1: है? ओहो,
0: हाँ, और
1: जी,
0: कोई इस्तेतात नहीं है तो मेरे पास आए,
1: जी
0: मेरे सेंटर पे आए, मैं उनको जरूरत अगर है तो उसी हिसाब से दे करूंगा, और जरूरत पड़ी तो फ्री भी करेंगे।
1: आकाशवाणी हैदराबाद के सामीन के लिए आप कुछ खसूसी भी
0: बिल्कुल
1: वो करने
0: बिल्कुल
1: वाले
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके
1: हैं।
0: लिए डिस्काउंटेड रहेगा बहुत ज्यादा, और अगर वो दे भी नहीं सकते तो हम फ्री भी कर सकते।
1: तो सामीम, आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने एक पेशकश कर दी है कि अगर जो भी हमारे सामीन हैं आकाशवाणी हैदराबाद में हमें सुन रहे हैं, तो और अगर घर में इस तरह का कोई, किसी के घर में भी मिर्गी का कोई मरीज़ है और वो इलाज के ताल्लुक से डॉक्टर साहब से राबता करेंगे तो उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, इलाज के बारे में आपने बताया और आपके कुछ जो तजुर्बात हैं उसको आप ज़रा शेयर कर दीजिए इस ताल्लुक से, मतलब आप कई मुल्कों में रहे
0: हाँ,
1: और दुनिया भर के मरीज आते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी जी जी
1: और दुनिया भर के मरीजों में और इंडिया में क्या सेम तरह की चीज़ें हैं या मरीजों में अलग अलग चीज़ें हैं?
0: देखिए, ये क्या होता है कि जब नतीजा अच्छा होता है
1: जी
0: तो बात फैल जाती है, और ये मेरा कुछ भी नहीं, अल्लाह का करम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारे सेंटर का जो है ऐसा रिजल्ट है जो आपको किताब में भी नहीं मिलेगा,
1: जी जी बिल्कुल
0: और पूरा अल्लाह का करम है।
1: जी
0: तो जब लोग आते हैं तो सब जगह वो गूगल में, याहू में पढ़ते हैं,
1: जी
0: और वो जब आते हैं तो फिर हम उनको, अभी कल ही 2 दिन पहले इराक से आए थे।
1: इराक से, जी,
0: इलाज तो वही है कोई मुल्क के भी हो, मगर जो है उसकी कुछ कुछ मुल्कों में कुछ कुछ वजूहात से फिट्स होते हैं, जैसे कुछ मुल्कों में टीवी से है
1: अच्छा,
0: मेनिंजाइटिस की, और कुछ मुल्कों में जो है असल आपस में शादी करने से।
1: उससे भी है? ओके
0: बिल्कुल,
1: ओके,
0: बहुत ज्यादा
1: जेनेटिक मामला क्या क्या?
0: जेनेटिक है,
1: हाँ, तो
0: कजन्स में शादी होती है,
1: ओके ओके ओके ओके,
0: तो उसमें उनकी जेनेटिक एपिलेप्सी सामने आती
1: ओके
0: फिर।
1: ओके ओके,
0: तो इस किस्म के हर मुल्क में एक अलग ये देखी जाती है। हमारे मुस्लिम ममालिक में आपस में जो है शादियां
1: शादियां जो
0: ज्यादा
1: होती
0: हैं,
1: हैं, जी
0: तो इसमें जो है जेनेटिक टाइप की, और वैसे भी जेनेटिक ज्यादा ही होती है, 64%, 60% वो है और दूसरे लगे हैं।
1: तो सामीन, आपने सुना डॉक्टर जफर शाहनवाज साहब को, उन्होंने मिर्गी से मुताल्लिक तफसीली रोशनी डाली कि उसमें क्या एहतियात करनी है, किस तरह की गलतफहमियां हैं और इलाज कितना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपके लिए मैं एक शेर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सबके हिस्से में कहाँ आती है ये इज्जत व तकरीम, तुमको करना है अभी जश्न चिरागा कितने। तो अल्लाह करे ये सफ़र आपका जारी रहे, लोगों की खिदमत आप करते
0: आमीन
1: रहें। हमारे
0: आमीन,
1: स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से खैर मकदम है और
0: बहुत बहुत
1: इस्तकबाल है।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप।
2: After Suruchi Singh and Kamal Jeet claimed India's second gold medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team event. Meanwhile, Manoj Shah and Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Joshua Chidambam and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed double squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal.

0: in women's short put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000 meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
1: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
0: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और परवीन कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
0: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
0: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम

0: स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोट्रानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Rasood, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400 meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50 meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400 meter freestyle.

0: freestyle event, none of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
2: Boxing ring se Bharat ke liye mili juli khabar samne aayi hai. Purushon ke 60 kilogram varg mein Sachin ne shandar pradarshan karte hue quarter final mein jagah banayi. Jabki mahila 54 kilogram varg mein Preeti Pawar ka safar round of 16 mein hi khatm ho gaya. Pehle baat Sachin ki, unhone Jordan ke purv Asiai champion aur Vishwa championship ke kaans patak vijeta Muhammad Abu Jaje ko kade mukable mein 4-1 ke nirdayak faisle se shikast di. Sachin ne shuruaat se hi tez raftaar aur satik panchon ke saath mukable par dabao banaye rakha. Abu Jaje ne aakhri daur mein wapsi ki koshish ki, lekin Sachin ki chusti ke aage unki chunauti kamzor pad gayi. Bharatiya mukkebaz ne lagatar satik panch lagaye aur muqabla apne naam kar liya. Is jeet ke sath Sachin ne quarter final ka ticket pakka kar liya. Ab unke samne Japan ke Shunsuke Kitamoto ki chunauti hogi, jo Vishwa Championship ke kaansya patak vijeta reh chuke hain. Wahi mahila 54 kilogram varg mein Preeti Pawar ko round of 16 mein haar ka samna karna pada. Preeti ko Uttar Korea ki Olympic kaansya patak vijeta Pang Chol Mi ne 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी. प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली. यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया.
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
3: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी. निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही.
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
0: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished fifth in the men's kayak double 500 meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished third among four pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500 meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished fourth among five pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
3: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए. सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे. वैसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया. इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर.
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
2: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया. भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका. चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया. भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक, जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जयसूद ने 66.559 अंक हासिल किए. हांगझो एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी.
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
0: India went down 0

0: again to our listeners, and thank you for staying tuned to FM Rain.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर. दोस्तों, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जो कि रोजाना पेश किया जाता है शब 9:30 बजे से 11 बजे तक. आज का नए रंग प्रोग्राम का सिलसिला जारी है. दोस्तों, आइए नए रंग प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं गीत सुरेले गाता जा. आइए दोस्तों, गणेश चतुर्थी के मौके पर कुछ फिल्मी गीत.

दोस्तों, आज मुल्क भर में हमारे हिंदू भाई नहायत अकीदत के साथ गणेश निमज्जन मना रहे हैं। आइए इसी मौके पर सुनते हैं एक और गीत।

दोस्तों, गणेश चतुर्थी के पुरजोश त्यौहार के बाद आज गणेश निमज्जन का मौका है। अकीदत, खुशी और उम्मीद के साथ अकीदतमंद अपने प्यारे गणपति पप्पा को विदा करते हैं। इस यकीन के साथ अगले बरस वो फिर आएंगे और ज़िंदगी में खुशियों, अमन और खुशहाली का पैगाम लाएंगे। ढोल की थाप, मौसीकी की लय और गणपति पप्पा मोरिया के नारों के दरमियान ये त्यौहार एक खूबसूरत पैगाम भी देता है कि ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी के साथ जुदाई का लम्हा भी आता है, लेकिन यादें और मोहब्बत हमें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसी खूबसूरत, इसी खुशी, अकीदत और उम्मीद के जज्बे के साथ आइए सुनते हैं खूबसूरत फिल्मी नगमा जो आज के इस पुरमसरत मौके की फ़ज़ा को मज़ीद दिलकश बना देगा।

जय माता दी। माता वैष्णो के परम भक्त जनों, चलिए हम सब मिलकर मैया के पावनकारी नाम का सुमिरन करें, ज्योता वाली की अपार महिमा का कीर्तन करें, पहाड़ा वाली माता का चिंतन करें, मेहरा वाली माँ के चरणों का ध्यान धर उसका दर्शन करें, लाटा वाली के दरबार में जाकर माँ का पूजन करें, मंदरा वाली की चौखट पर नमन करें। आइए हम सब श्रद्धा और भक्ति से शेरा वाली का जयकारा बुलवाएं।

गीत सुरीले गाता जा। इस प्रोग्राम में दोस्तों गणेश निमज्जन के मौके पर खसूसी फिल्मी गीत आपको सुनवाए गए। आइए दोस्तों उर्दू प्रोग्राम अन्ना रंग के आखिर में सुनते हैं पयाम शब जैदी के साथ।

हम न कहते थे हाली चुप रहो, हम न कहते थे कि हाली चुप रहो, रास्त गोई में है रुसवाई बहुत। सच बोलना यकीनन अच्छी सिफत है, लेकिन सच के साथ हिकमत, मौका महल और नर्म लहजा भी जरूरी है। हर सच हर जगह और हर वक्त कहना दानिशमंदी नहीं। ऐसी रास्त गोई जो किसी की इसलाह के बजाय दिल आजारी या फसाद का सबब बने, उसमें एहतियात जरूरी है। सच जरूर बोलें, मगर सच को हिकमत और शायस्तगी के साथ बयान करें, क्योंकि दुरुस्त बात भी गलत अंदाज में कही जाए तो दिल तोड़ सकती है।

शब अभी आप सुन रहे थे, पेशकश थी जैदी की। इसी पर दोस्तों उर्दू प्रोग्राम नैरंग अब इख्तिताम को पहुंचता है। कल शब 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम नैरंग की एक और बज़्म के साथ इसी मेगाहर्ट्ज़ पर हम दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। चंद लम्हों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: एफएम पर अब तक के मुख्य समाचार।
1: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: केंद्र सरकार ने मणिपुर

नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार ए के भट्टाचार्य स्टूडियो में आमंत्रित है. नमस्कार मिस्टर भट्टाचार्य, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडेस्ट गेन्स. सेंसेक्स राइजेस 315 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 23,100. Industry needs to be remain globally competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran. And global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर हुए बंद. सेंसेक्स 315 अंकों की वृद्धि में रहा. निफ्टी 23,100 के स्तर को पार कर गया. विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना जरूरी है, कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.43% की तेजी से 315 अंक बढ़कर 73,896 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.34% की बढ़त से 77 अंक ऊपर 23,141 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में रुख मिला जुला था. मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% से अधिक की गिरावट में रहा. हालांकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बाजार आज सुबह सपाट खुले थे. अधिकांश सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना रहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और निचली कीमतों पर हुई खरीदारी के समर्थन से कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार में तेजी आ गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. Sensex rose 315 points, or 0.43%, to close at 73,896. Nifty gained 77 points, or 0.34%, to settle at 23,141. The broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index dropped over 0.1%, while the small-cap 100 index rose more than 0.1%. Markets opened flat this morning amid mixed global cues. Sensex and Nifty stayed subdued through most of the session, but staged a recovery in the final hour, supported by a decline in crude prices and value buying.
1: और कंपनियों पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज तेजी में रहे. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 2.8%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक और एशियन पेंट्स का शेयर 1.9% की वृद्धि में रहे. इसके विपरीत ट्रेंट का शेयर 1.4% गिर गया. इंफोसिस के शेयर में 0.8% की गिरावट आई और कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% के नुकसान में रहा.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of the 28 sectors edged upward, with commodities remaining unchanged. Among the top gainers, consumer durables jumped 1.1%, auto surged over 0.9%, and realty rose over 0.6%. Conversely, hospitals declined 2.1%, healthcare lost 0.5%, and oil and gas, as well as telecommunications, dipped over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,210 companies advanced, 2,146 companies declined, and 220 companies remained unchanged.
1: और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. मिस्टर भट्टाचार्य, कल की जो भारी गिरावट आई उसके बाद आज जो कारोबार हमने देखा है 300 अंकों से अधिक बढ़ा है सेंसेक्स, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या रीजन रहा आपके अनुसार?
2: पहली बात तो यह है कि रिकवरी हुई है. कल जैसे आपने कहा कि बहुत भारी गिरावट थी, उसके बाद थोड़ी बहुत जो वैल्यू बाई हुई है उसके लिए ये उसके लिए जिम्मेदार है. पर ये जो रिकवरी जो हुई है उसकी जो कल की जो जो सेटबैक जो या लॉस जो थी उसे आधी भी रिकवरी नहीं हुई है. तो मार्केट में अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है मार्केट के साथ, और उसका एक प्रधान इंडिकेशन ये है कि आज की भी जो जो गेंस हुई हैं उसमें भी अगर आप देखें तो FII नेट सेल किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए से ये मार्केट में ये चढ़ाव आया है. तो इसका मतलब यही है कि जब मार्केट गिरती है उस टाइम में भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, पर FII की जो मतलब बिकवाली के कारण वो मार्केट नीचे जाती है, और जिस समय मार्केट चढ़ती है उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसी तरह वो सटीक रहते हैं पर FII भी निकल जाते हैं. तो इसका एक एक एक कारण यही है कि जो FII अभी भी

0: इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं किस तरह से इंटरनेशनल यूएस मार्केट का रुख देखते हुए, क्योंकि वहां पे यील्ड्स अभी भी बढ़ती रही है और इसीलिए वो ज्यों ही एक मौका देखते हैं, अगर रुपए में थोड़ी बहुत जान आ जाती है उससे वो, अगर मान लीजिए रुपए थोड़ा एप्रिशिएट करती है तो वो भी एक इंसेंटिव होता है उनके लिए पैसे ले जाने का। और लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम जो है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतना लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो रहा है मार्केट से, अगर आप आईपीओ कहेंगे या फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज जो इन्फ्लोज जो आए हैं उसके लिए लिक्विडिटी है, उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओएमओ लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने के लिए हुआ है, वो भी एक कारण है ये इस मार्केट की चढ़ाव और उतराव, उतराव ज़्यादा चढ़ाव कम।
1: तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो FIIs हैं उनका फोकस अलग फैक्टर्स पे है, और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका शायद दे आर लुकिंग इनवर्ड, जो हमारी मजबूती है।
0: देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट की जो एक बुनियादी ढांचा
1: जी
0: जो बदल रहा है वही प्रतिफलित करता है कि हमारे इसमें, अगर आप पिछले 6 साल में ये ट्रेंड देखें कि डायरेक्ट इक्विटी कम हो गई है, इंश्योरेंस कम हो गया है, बैंक सेविंग्स कम हो गया है, पर एक चीज जो बढ़ता रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स। और वो म्यूचुअल फंड की जो पिछले 6 साल की जो जो जो आंकड़े दिखते हैं वो करीबन 10% की वृद्धि हुई है। हालांकि सारे ही जो मैंने कैश बोलिए या डायरेक्ट इक्विटी बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए या पेंशन फंड्स बोलिए, ये सारों में डिक्लाइन हुआ है और उस डिक्लाइन को कॉम्पेंसेट किया है म्यूचुअल फंड्स ने। और म्यूचुअल फंड्स ही आज डायरेक्ट जो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है,
1: जी
0: डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पहली एक उनकी, तो ये मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में जो अभी भी जो अभी से जो जो जो जान जो है
1: जी
0: वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के जरिए बची हुई है।
2: AKB, let's now come to specific sectors. The auto index actually went up by 1%. Some of the prominent companies actually went up by as much as 2 and 2.5%. What other reasons? Borrowing costs are creeping up because of global inflation imported into the economy, crude oil prices
0: I
2: going
0: think
2: up, even though they are arrested right now. But do you think that the volume sales is going to pick up, smaller cars revival, etc.? Is that what's reviving sentiment?
0: the auto industry is particularly positively influenced by the revival and good going of the EV sector. If you look at the companies that have done well in the stock market, they are actually companies that are well positioned in the EV sector. If you look at the entire the auto industry's performance and composition of the market share of different kind of categories of vehicles, you see the creeping increase of the EV sector, the electric vehicle sectors. Now that is a growth margin, growth area, and there the margins of the auto companies much higher. So it is that increase in the margins and rising market share. I mean, there was a time about a year ago, the market share of EVs in the passenger vehicle category was less than 33 or 34. Today is almost around 41, 42. Now it is actually, if you take the non-passenger vehicle categories and the passenger vehicles category, you will see that the EV segment is actually becoming very, very substantial. So therefore, the auto sector is responding to that improvement, which is the margins are rising because of the EV segment's growth.
2: Realty also went up by 0.6% today. How do you see auto and realty being linked to borrowing costs? Because you have to borrow in order to acquire both immovable and movable properties for the consumer.
0: The realty is rising because it realizes that the segments that will be positively benefiting them are still very much intact. For example, the consumption and the demand in the economy is still intact. So the realty is responding to those positive signals, which is why the borrowing costs are not a source of relief at all

0: for the Indian companies. On the contrary, the borrowing cost probably will go up as times come. Because in October monetary policy review, you might see the borrowing costs go up. So it is the despite the borrowing cost increase, the demand visibility in the realty sector is what is keeping the realty sector alive.
1: So, Mr. Bhattacharya, अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि अनसर्टनटी बहुत है ग्लोबल लेवल पर लेकिन क्रूड प्राइसेस अभी फॉर नाउ नीचे आए हैं और लगता है कि शायद कुछ शायद कोई पीस डील भी उसके कुछ आसार नजर आ रहे हैं और अगर डोमेस्टिक जो मजबूती देखें जो जिस तरह के जीडीपी फिगर्स हमारे आए हैं जिस तरह के जीएसटी कलेक्शंस जो भी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं आपको लगता है कि एक का जो अंडरकरंट है वो पॉजिटिविटी का है अभी भी जो भारतीय बाजार है
0: देखिए जरूर मैं ये जरूर कहूंगा क्योंकि आपकी जो एक्सेप्ट एक एरिया में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जो डिफरेंस जो है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड में थोड़ा बहुत शॉक दिख रहा है बाकी जो सेक्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम है और वो आपकी अगर आप कंजम्पशन फिगर को देखें या इन्वेस्टमेंट फिगर्स को देखें दोनों में भी आपको लगेगा पर हाँ टर्म्स ऑफ ट्रेड में का एक एडवर्स शॉक जरूर इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में जरूर मिला है
2: निफ्टी बैंक सॉ माइनर रिकवरी टुडे स्पेशली आफ्टर द करेक्शन येस्टरडे बिकॉज ऑफ द पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय IRDA on the insurance sector and the distributors being banks themselves and the income is likely to hit. What is the prospect of banking valuation right now?
0: Yesterday's the setback to the banking stocks was largely because of the insurance regulators' stipulation that they cannot, and banks are in the insurance sector in a big way. They cannot offer the kind of commission they have been offering, which is substantial, 26% commission of sorts. So today, some of the banks which are not so doing so well in the insurance sector or no that pronounced in the insurance sector, they have recovered and not every bank.
1: आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निकेई सूचकांक 1.3% बढ़कर बंद हुआ दक्षिण कोरिया के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे अब रुक करते हैं भारतीय परिवेश में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा भारत के पास व्यापक विनिर्माण और समग्र सुधारों के माध्यम से विदेशी पूंजी आकर्षित करने की क्षमता है नई दिल्ली में आयोजित पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 13वें वार्षिक मंच को संबोधित करते हुए श्री नागेश्वरन ने कहा कि उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी निर्णय लेने का वैश्विक परिवेश अब बदल गया है इसलिए इस संदर्भ में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रदर्शन का आकलन करना महत्वपूर्ण हो गया है श्री नागेश्वरन ने कहा निवेशक संरक्षण कर नीति की निश्चितता और स्थिरता कुशल प्रतिभा की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स भी निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं उन्होंने कहा कि वैश्विक ब्याज दर का बदलता परिवेश भी पूंजी की लागत और सीमा पार निवेश प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है तो क्या लगता है आपको जो प्रतिस्पर्धा की उन्होंने बात कही वैश्विक प्रतिस्पर्धा की और ये जो इम्पोर्टेंट उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं कैसा आप परिदृश्य देखते हैं या आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और नागेश्वरन जी ने पहले भी इसके बारे में इनकी हमारी दृष्टि आकर्षित किया है जो जिस तरह से हमारी जो देश की आर्थिक वृद्धि दर चली है पिछले 3 दशक में और इस वक्त जो वातावरण जो है जो परिस्थितियां जो हैं वो इतनी अनसर्टेन है अनिश्चयता से गुजर रही हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बढ़ गई हैं उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो रिस्क बढ़ गई है उस समय उनका ये कहना है कि हालांकि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमें स्टेबिलिटी लानी है जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा हमारी बरकरार रहे पर उसके साथ साथ ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए एक नई मॉडल की ज़रूरत है और उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ में उनका यही कहना है कि जो अब तक हम करे आ रहे हैं वो शायद काफी नहीं होगा आगे हमें और भी जो आगामी काल के लिए हमें उसको
1: जो सुधारों की गति है वो जारी रहनी जरूरी है
2: जी इन मोर न्यूज़ गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक

0: of India, RBI, will borrow 7,86,000 crore rupees in the second half of the current financial year. This includes a sovereign green bonds issuance of 15,000 crore rupees, according to an official statement of the Finance Ministry. The borrowing will be executed through 23 weekly auctions. With this, the total borrowing for the full financial year is expected to reach 15.9 lakh crore via dated securities. For the benefit of our listeners on Akashvani, tell us, what are the sovereign green bonds and the debt to GDP ratio that India economy is facing?
1: Well, this development has greater significance for how the government is going to play out in its fiscal consolidation program. Green bonds is a very small part of the overall borrowing, as you can make out that out of 15 lakh crore of borrowing or 16 lakh crore of borrowing, you have a very small amount of green bond, but it sends out a very positive signal to the market. But the bigger signal to the market, a very reassuring signal at that, is that the government's commitment on 4.4% of fiscal deficit, which is actually what is composed of these borrowings, will remain under check, and the government is preparing for meeting that target. So from 4.4, it is supposed to come down to 4.3 in the current year. And if this number is what the government is planning to borrow in the second half, which means that it will not exceed its borrowing levels
0: as per the FRBM
1: and as far as the commitment that the government made in parliament. So for fiscal hawks and the fiscal consolidation program watchers, this is really a piece of good news.
2: और लेते हैं अगली खबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके. सो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा उत्पादन बढ़ा है उसकी बात कही कि 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है. और रक्षा उत्पादों का उन्होंने जिक्र किया, 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए. ये कितना इम्पोर्टेंट है, नए जो सेक्टर्स हैं उसमें.
1: एक अभी तक हमने प्रधानमंत्री जी को सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात, अब लग रहा है कि एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम हुआ है उसके ऊपर वो हमारा दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में हालांकि ज्यादातर मोबाइल फोन का हुआ है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में पिछले 3-4 सालों में बहुत ही एक अभूतपूर्व एक वृद्धि, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसके साथ साथ जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के आने से इसमें एक नई तेजी आई है, नई रफ्तार आई है. तो मैं समझता हूं कि डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और दोनों साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके वो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को काफी बढ़ावा दे सकती है.
0: In more news, SEBI board has approved a slew of reforms to deepen market participation, widen investment avenues and simplify regulatory norms. At its 215th meeting, SEBI approved a comprehensive overhaul of regulations governing portfolio managers. Under the new regulations, portfolio managers will be permitted to invest in IPOs, primary debt issuances and certain foreign securities, while also providing a route for investment in direct mutual fund plans.
2: उधर देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगभग 14.9 अरब डॉलर कम होकर 765.9 अरब डॉलर पर आ गया. अभी भी बहुत एक हेल्दी लेवल है, आप कहेंगे?
1: जरूर, क्योंकि जो एफसीएनआर भी जो करेंसी स्वैप के आधार में जो पैसा आया था वो अभी भी बरकरार है, और इससे दिखा रहा है कि सरकार की जो नीति थी वो एकदम सही जगह थी.
0: The new merchant discount rate framework will come into effect from the 15th of next month. Under this framework, unified payments interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. National Payments Corporation of India said that the framework is in line with the international payment system. Most global payment systems, including digital public infrastructures, have economic models that support infrastructure and innovation. It added that India's approach

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, मन की गहराइयों में ना वो गीत जो आज भी आपके मनमीत बने हुए हैं, कुछ ऐसे ही अंदाज से सजी गीत मेरे मनमीत को लेकर एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। दोस्तों, कुछ साथ ना दिलों की यादों को समय समय के साथ महकाते रहते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग किस्मत में नहीं दिल में लिखे होते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के लिए पर उम्र भर याद रहते हैं। कुछ इन सदाबहार गीतों की तरह। जी हाँ, आइए सुनते हैं गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और फिलहाल ये गीत याराना फिल्म से आपकी नजर करते हैं किशोर जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए अंजन साहब ने और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन जी ने। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

चांद को देखकर कि काश ये चांद और करीब आ जाए। कुछ पल के लिए चांदनी सीने में उतर जाए, लगा लूं एक बार गले और तसल्ली हो जाए। कभी तो चांद धरती की बाहों में समा जाए। कुछ प्यारे ख्यालात और ये प्यारा एहसास इस समा को और भी खूबसूरत बनाएगा। ये अगला गीत आप सुनेंगे जब जब फूल खिले फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आइए सुने ये खूबसूरत अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 MHz पर ये खूबसूरत अंदाज गीत मेरे मनमीत में आप सुन रहे थे श्रोताओं। जी हाँ, फिल्म थी रजिया सुल्तान और आवाज बेहद प्यारी लता जी की। इस आवाज को बोल दिए जानिसार अख्तर साहब ने और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। आइए ये अगला प्यारा अंदाज सुने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा जी की आवाज में, आनंद बख्शी साहब के बोल और आरडी बर्मन साहब का खूबसूरत दिलकश अंदाज। दिलों की ये प्यारी आवाज।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत के कुछ ऐसे अंदाज गीतों के आप तक पहुंच रहे हैं जो दिल को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं और ये कहें कि दिल की बातों को बड़ी गहराई से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल इस गीत के साथ आपसे लूंगी इजाजत। आपको छोड़े जाती हूं आपके अपने पसंदीदा एफएम गोल्ड के साथ और इस प्यारे से गीत के साथ जो कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत है लता जी की आवाज में। आइए इसको सुनते हैं। इस गीत को अल्फाज दिए हैं अंजान साहब ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई, व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए पंजीकरण के लिए योग्य 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों को फॉर्म 6 भरने में बूथ लेवल ऑफिसर BLO सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under the Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of their service.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allows India to grow and prosper. The Office of the Chief Electoral Officer, CEO, Delhi has directed all district election officers to organize special camps for enrollment of young electors at colleges, universities and other educational institutions across Delhi on 29th and 30th September as part of the Special Intensive Revision 2026. Students between age 18 and 25 eligible

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबू।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर आएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा। धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, वक्त पाबंद नहीं है कि ठहर जाएगा। रोशनी में है चरागों के तले तारे की, रोशनी में है चरागों के तले तारे की, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा। और अगला गीत फिल्म दो रास्ते से, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चांदनी, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक पुराना खत मिला, एक पुराना खत मिला कपड़ों के नीचे किसी संदूक की तह में, जैसे बीते बरसों ने अपनी कोई सांस छिपा रखी हो। स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी। अक्षर थोड़े कांपते हुए फिर भी पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। उस पन्ने पर किसी ने प्रेम लिखा था, किसी ने घर का हाल, किसी ने लौट आने की आस और किसी ने बस इतना कि अपना ख्याल रखना। कितना छोटा था वाक्य पर उसमें कितना बड़ा संसार। बाहर की दुनिया उंगलियों की गति से आगे निकल गई। संदेश क्षण भर में दूर देश तक पहुंचने लगे, मगर इस कागज ने अब भी अपनी धीमी चाल नहीं छोड़ी। वह आज भी शब्दों के बीच एक चेहरा संभाले है, एक आवाज, एक मौसम, एक ऐसा अपनापन जिसे किसी स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता। मैंने खत फिर तह किया इस बार संदूक में रखने के लिए नहीं, अपने समय से बचा कर रखने के लिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। अगला गीत फिल्म स्वामी से, आवाज है यसुदास की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: देखिए हमारा फाइव स्टार होटल है, यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। कवाली का प्रोग्राम
1: मैनेजर साहब, किस तक तक हमारा फोक का ऐसा प्रोग्राम नहीं कर देखने वाले नाचने की पंजाबूर पार्टी है।
2: काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर।
1: गुड
2: मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
0: ओ,
1: हमारे ट्रुप के तरह के प्रोग्राम को करती है।
0: ओ, प्लीज सिट डाउन सोना।
2: शुक्रिया।
0: चाय
2: जी। मैनेजर साहब, एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसको मैं पूरा सीजन ना बाबा।
0: ओके, धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। जापान एशियाई खेलों के कल सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलिंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris, travelling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vatnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allow India to grow and prosper. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 AM on Sunday. It will be the 138th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DT News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Office of the Chief Electoral Officer, CEO Delhi, has directed all district election officers to organize special camps for enrollment of young electors at colleges, universities and other educational institutions across Delhi on September 29th and 30th of this month as part of the Special Intensive Revision 2026. Students between the age of 18 to 25 eligible for registration will be assisted by the BLOs to fill Form 6 for inclusion in the electoral rolls. The CEO has also directed officials to ensure adequate forms and materials, maintain records of applications, transfer forms relating to other districts or assembly constituencies to the concerned authorities and publicise the camps widely. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that meaningful UN reform requires text-based negotiations, warning

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। नदी किनारे कांस खिले, नदी किनारे कांस खिले जैसे उजली पात, दूर तलक फैली हुई चांदी की सौगात। हवा चली तो झूम उठे लहराए वन फूल, शरद उतर आई जैसे धरती के प्रतिकूल। नहीं, यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप, यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, और आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयति। रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे, कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे। लिखावट देखते ही मन कह उठता था, हाँ यह उसी का है, हाँ यह उसी का है। किसी पन्ने पर माँ की चिंता खिली थी, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा। हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था, हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था, डाकखाने से निकलकर गलियों पगडंडियों शहरों को पार करता, किसी दरवाजे तक पहुंचता और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता, और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता। तब उत्तर आने में दिन लगते थे, मगर हर दिन उस व्यक्ति का हिस्सा बन जाता था जिसके आने की खबर एक कागज में बंद थी, एक कागज में बंद थी। और अब चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़ जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है साजन, आवाज है SP बाला सुब्रमण्यम की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्र शेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला 2026 महिला स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों तक के साथ आयोजित किया जाएगा। देशभर से लगभग 2500 प्रतिभागियों के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य और अन्य ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करने की उम्मीद है। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ये मेला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार संपर्क और सीधी बिक्री को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के नियमों और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है। ये टीम राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रही है। राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक के चांदी की फिलीग्री या तारकशी कला या संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आज कुछ बातें नई पुरानी करते हैं। जब पुरानी बातें चली हैं तो हम चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। संदूक में रखे पुराने पत्र समय के सबसे सच्चे दस्तावेज लगते हैं। उनमें किसी का घर का सुख है, किसी बिछड़े मन की कसक, किसी रिश्ते की चिंता और किसी प्रेम की चमक। बाहर दुनिया बदलती रही, कपड़े बदले, घर बदले, शहर बदले, और बदलते बदलते संवाद भी बदल गया। अब शब्द उंगलियों से निकलते हैं और पलक झपकते दूर चले जाते हैं, मगर संदूक में रखे पत्र आज भी अपनी रफ्तार से हमें देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो क्या शब्दों को बचाने के लिए कभी किसी कागज की जरूरत पड़ेगी। और अगला गीत अनुराग।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है विनोद राठौड़ और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है चांदनी।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और हम बातें कर रहे हैं कुछ नई पुरानी। अलमारी के सबसे नीचे रखा वो छोटा सा डब्बा आज फिर मिल गया। अलमारी के सबसे नीचे रखा वो छोटा सा डब्बा आज फिर मिल गया। अंदर कुछ सिक्के थे, दो पुराने टिकट और एक तस्वीर। तस्वीर देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना बदल गया है सब कुछ। जब जेब में पैसे कम थे मगर घूमने की इच्छाएं बहुत थीं, एक टिकट ने पूरा सफर याद दिला दिया। एक तस्वीर ने पूरा दिन। हमारी जिंदगी भी कितनी अजीब है। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर कोई छोटी सी चीज पूरा बीता हुआ मौसम एक पल में सामने रख देती है। और आज सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अप्रैल फूल, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, वो बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, जो बिगड़ गया उसे हर पल दोहराने की जरूरत नहीं। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब अभी इसी वक्त जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को आराम दीजिए, कोई प्यारा सा गीत सुनिए और आने वाले कल की थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है और शायद यही अगली सुबह की कहानी आज रात से शुरू हो रही है। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाय की अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं की पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिणी क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल थे। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलीग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूरदराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों को निर्बाध डाक सेवा उपलब्ध कराना है। मंडी में सफल परीक्षण के बाद अब इस व्यवस्था को लाहौल की 11 और दूरदराज शाखाओं तक पहुंचाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती स्थितियों के कारण भारी बारिश हो रही है। भारी

200 आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। हमराही कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को वंदना चुक का प्यार भरा नमस्कार।

0: सुना
1: इस गीत को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि हम बचपन में लौट गए और एक दूसरे के साथ अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ये गीत था श्री 420 फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है। मजरु सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने।

और वैसे भी दोस्तों, अगर कोई किसी से मिलता है तो हालचाल तो पूछता ही है और कहते भी है ना, कैसे हैं आप? तो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे हम हमारा हाल ठीक ना भी हो तो भी हम कहते हैं बढ़िया है, तो सुनने वाले को बहुत एनर्जी मिलती है। आपको बता देते हैं कि आपने ये गीत सुना चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, और अगला गीत आप सुनेंगे हावड़ा ब्रिज फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, कमल जलालाबादी की रचना है और ओ पी नैयर का संकेत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी

0: लाइव सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हमराही और इस कार्यक्रम में आप युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

और जब ऐसे में दिल चला जाता है तो पता ही नहीं चलता। फागुन फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। कमर जलालाबादी की रचना थी और ओपी नैयर का संकेत। अगला गीत आप सुनेंगे यहूदी फिल्म से, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज में, शैलेंद्र की रचना है।

और शंकर जय किशन का संकेत। दोस्तों इन गीतों को सुनते हुए आज बहुत ही पुराना दौर याद आ रहा होगा।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत से संवारा है सचिन देव बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे

की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर, इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

याला दिल ले गई, और आपका भी किसी ने दिल जरूर लिया होगा। उजाला फिल्म से अभी आपने गीत सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी की बोल थी और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे रानी रूपमती फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में है। भरत व्यास ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है SN त्रिपाठी ने।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे काला पानी फिल्म से। ये गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: दोस्तों, बहुत बार अपनों के आगे हम लोग हार मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने हैं और उनको जिताने में यानी सामने वाले को जिताने में हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है और हम भी यही चाहेंगे कि कई बार आप अपनों को मनाने के लिए अगर कोई आपसे रूट जाता है तो उसे मनाने के लिए कई बार हार भी जाए तो यहाँ हार मत सोचिएगा क्योंकि रिश्ते को बरकरार रखने में ही भलाई होती है। तो इसलिए जहाँ कोई रूठे वो भी अपना तो उसे मनाने की कोशिश कीजिए और झूठ मूठ हार जाने में कोई बुराई नहीं।
1: छोटी सी मुल

और दोस्तों, ऐसी मुलाकातें ही हमारे लिए एक दूसरे के लिए कब प्यार बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और ये छोटी मुलाकातें जरूर आपसे भी हमें मिलवाएंगी। और आप जरूर बताइएगा कि आपको गीत कैसे लगते हैं सुनने पर। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदनी की फिलीग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूर दराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। जापान एशिया खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरजीत सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एल गोवेन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया।

हमारे दोस्तों ने ट्यून कर लिया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और कार्यक्रम अरुणिमा। इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों को वंदना चौक की सुप्रभात और गीतों के साथ स्वागत है आप सभी का।

छोटी सी बात फिल्म से ये गीत था, ये सुदास और आशा भोंसले का गाया हुआ, योगेश का लिखा गीत था और सलिल चौधरी की बनाई हुई धुन। अगला गीत आप सुनेंगे आस का पंछी फिल्म से, सुबीर सेन का गाया हुआ है। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, इंसान बहुत सारी आस यानी उम्मीदें जीवन में लगा के रखता है और जीवन भर उन उम्मीदों को पूरा करने में लग जाता है। फिर जो पूरी हो जाती हैं वही उसे खुशी महसूस होती है और फिर और उम्मीदें जगती रहती हैं।

दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी उमंगें भी ऐसे ही पतंग की तरह बहुत ऊंची उड़ती जाएं और उन उमंगों को आप जरूर पूरा करें। भाभी फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे लावार।

दोस्तों, ये पंक्तियां इंसान के मन में तब आती हैं जब वो हर तरफ से निराश और हताश हो जाता है और अपनी डोर ऊपर वाले को सौंप देता है।

मशाल फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी हृदयनाथ मंगेशकर ने। जमाने को दिखाना है, लेकिन क्या दिखाना है, सुन लेते हैं इस गीत के माध्यम से। पद्मिनी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले का गाया ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

सरगम फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां हैं, दोस्तों वाकई में ही ये जीवन उतार चढ़ाव का ही तो नाम है। और जिसने जिंदगी को हंसते हुए बिता लिया, वो सारी मुश्किलों से, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है।

दोस्तों, जैसे जैसे सुबह होती है, सूरज की किरणें दिखती हैं और सूर्य की लालिमा देखती है, वैसे ही हमारे अंदर सकारात्मकता भी आने लगती है और इस जीवन को भी हमें सकारात्मक रूप से ही जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी ना जाने कितनी है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों से अच्छे से मिलें जब भी मिलें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण

0: राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर समूचे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये नई रेल सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक और विकल्प प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक SS यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजें PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई हैं। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल हैं। इनमें कटक की चांदी की फिलिग्री या तराक्षी वाली तथा संबलपुरी वस्त्र प्रमुख हैं। PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। उधर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and the more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. Uttar Pradesh government has decided to take strict action against hospitals that fail to comply with the Ayushman scheme's rules and prescribed standards. For this purpose, the state health agency has constituted a 4-member team. The team has also started conducting surprise inspections of hospitals empaneled under the scheme. State Agency for Comprehensive Exam and Integrated Services, SACHIS. The External Affairs Minister is in New York leading the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly. Dr. Jaishankar will address the high-level session today. During the visit, the minister has attended various plurilateral and bilateral meetings. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is likely over Chhattisgarh and Madhya Pradesh today. The districts in UP that are likely to receive heavy rainfall include Rampur, Pilibhit, Bareilly, Shah Jahanpur and Bahrej. Meanwhile, parts of Delhi are expected to witness light to moderate rainfall today. In Asian Games, India's overall medal tally has reached 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze in Japan. Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan yesterday. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Hyun Hong and Gyeon Shu, who took silver with 478. Indian long-distance runner Gulveer Singh won the silver medal in the men's 10,000-meter race at the Asian Games. Indian athlete Baranika Elangovan won the bronze medal in the women's pole vault at the Asian Games. Another Indian athlete, Manpreet Kaur, won the bronze medal in the women's shot put. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Kulbir Singh on winning the silver medal in the men's 10,000-meter event at the Asian Games in Aichi, Nagoya, noting that he continues to make the country proud on the podium following his bronze earlier in the competition. They also congratulated Manpreet Kaur on winning bronze medal in shot put at Asian Games 2026. They also congratulated Baranika Elangovan on winning the bronze medal in the women's pole vault at her Asian Games debut. And that is the end of this news bulletin.

और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में आपने ये भक्ति रचना सुनी। संतोष आनंद की लिखी रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत। अगली रचना इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी ने इस रचना को लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, जब बरसात आती है तो कोई बरसात में आनंद की अनुभूति कर रहा होता है, तो वहीं को ही सैलाब के पास बैठा हुआ व्यक्ति वहां से निकलने का रास्ता सोच रहा होता है। तो जिंदगी ऐसे ही चलती जाती है, लेकिन हमें रुकना नहीं होता, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं।

0: ये गीत आपने सुना भक्ति में शक्ति फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना थी और सोनिक ओमी का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: भोर सुहानी कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

डगमगा जाते हैं हम ऐसी घड़ी में जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि तूने ही तो जीवन की नैया को संभालना है, जिसने अटल विश्वास रखा होता है वही आगे बढ़ जाता है।